0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Get a room, guys. I am sure आपने अपने relationship में कभी ना कभी तो phrase सुना ही होगा from all your friends, because वो disgusted हो रहे हैं देखकर कि हर minute आपको 2 second मिल रहे हैं, आपको आधा second मिल रहा है. You're either kissing each other or you're holding hands and getting really touchy feely. और ये honestly हर relationship का एक important, क्या कहते हैं उसको सोशियोलॉजी में, राइट ऑफ पैसेज होता है. मैं आपको ये भी शो ऑफ करने की कोशिश कर रही थी दैट मैंने सोशियोलॉजी ऑनर्स किया है. बट दैट सेड, वो एक स्टेज आता है ना हर रिलेशनशिप में वेयर यू कांट कीप योर हैंड्स टू योर सेल्फ. मतलब आपने अपने बंदे को देखा और आपका मन कर रहा है कि इसने ये टी शर्ट पहनी क्यों है, और अगर पहनी है तो इसे मैं फाड़ के उतार कब सकती हूँ. और ये फेज, ओके, इट काइंड ऑफ लास्ट फॉर मी इन एनी रिलेशनशिप, इट लास्ट फॉर अबाउट 1-2 महीने मेरी बेस्टी की जिंदगी में.

0: लिए अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
0: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
5: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, इट्स हॉट।
1: मम्मी को लगता है कि आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज यू आर हिटिंग ऑन योर ट्यूशन टीचर। आपका उसके साथ एक, एज माय नानी कॉल्स इट, अफेयर चल रहा है। ऐसी अश्लील बातें आप किसके साथ शेयर करोगे?
2: द सीक्रेट बॉक्स।
1: द राइट आंसर टू दैट इज मेरे साथ। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। यू कैन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड व्हाटएवर योर सीक्रेट कन्फेशन इज। मैं सिर्फ आपको रोशिफाई करना चाहती हूँ और थोड़े से मजे लेना चाहती हूँ। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर। हाय मिस्ट्री कॉलर।
3: Hi, how are you?
1: I am very good, but you are obviously a very naughty person.
3: Totally.
1: क्या बात कर रहे हो? अच्छा, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया था कि आपने कैसी गंदी काम किए हैं, but why don't you tell me, like, संक्षिप्त में कहते हैं कि exaggerate करके क्या कहते हैं, मतलब तसल्ली से बताओ यार कि कर क्या रहे हो आप अपनी जिंदगी में।
3: So what I'm doing right now is, so मेरा 6 years का relation है, but somehow मेरा boyfriend अब फर्दर studies के लिए कैनेडा चला गया है। दो आई लव हिम अ लॉट, बट आपको पता है वुमेन नीड्स तो एक चीज है ही है। तो व्हाट आई एम डूइंग नाउडेज इज आई एम जस्ट डाउनलोडिंग डेटिंग ऐप ऑन वीकेंड, हैविंग फन, एंड फिर मंडे को अनइंस्टॉल करके बैक टू बेसिक्स।
1: अच्छा, तो एक बात बताओ, ये वीकेंड पे आपके बॉयफ्रेंड को पता नहीं चलता है कि बंदी गायब है फॉर लॉन्ग आवर्स एंड यू नो फोन इज अनरीचेबल, फोन करता तो उठाती नहीं है, उसका क्या करते हैं?
3: नहीं, मतलब ही ट्रस्ट मी अ लॉट, सो दैट आई एम हैंगिंग आउट, सो या चल जाता है।
1: चल जाता है यार, अगर बंदा ट्रस्ट करे देन इट बिकम्स इजियर टू चीट। ऐसे सिचुएशन में क्या मैं आपके लिए रोशिफिकेशन कर सकती हूँ या एक और डेटिंग ऐप सजेस्ट कर सकती हूँ? व्हिच वन ऑफ द टू वुड यू प्रेफर?
3: एनीथिंग जो आपको पसंद है इस वक्त।
1: क्या बात कर रही है? अच्छा, मैं तुझे ना रोशिफाई कर देती हूँ। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर बैड कर्मा, हियर यू गो। Babe, you're absolutely killer. It was really nice talking to you. और अगर आपकी भी जिंदगी में ना आपने ऐसे कोई गंदे काम किए, मतलब boyfriend Canada में, he trusts you so much and you're like, हाँ तो ठीक है, trust को weekend पे side पे रख देते, that doesn't count on weekends, does it? I want to hear your story, Morning Glory, and to tell me all about it, hit me up Insta पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है ROCHIE। So do whatever you have to do, but कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot।

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं।
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिब्लिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
8: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwani.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
9: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो।
10: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी।

बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Parlor Banquet.

0: login to fame.
1: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इसलिन.
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
9: अब मिर्ची का
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

विद योर गर्लफ्रेंड जो ऑब्वियस आपको काफी बीटी देने वाली है, लेकिन अगर ये कॉन्वर्सेशन अभी तक नहीं हुई है, शी इज कॉल्ड यू फॉर कॉफी और आपको पता है कि आपकी पब्लिकली काफी पिटाई होने वाली है, माई सजेशन टू यू इज अपने जूतों में थोड़ा सा नमक डाल कर जाना। जी हाँ बहनों और भाइयों, यू मे थिंक आई एम क्रेजी बट आई एम नॉट। साइंस के हिसाब से सॉल्ट यानी कि नमक एक ऐसी चीज है जो आपके आसपास की और आपके अंदर की नेगेटिविटी को बहुत ही जल्दी अब्सॉर्ब कर लेती है और आपके सिस्टम से आप उसे दूर रखती है और आपके सिस्टम से उसे दूर रखती है। सो अगर आपके जूतों में सॉल्ट है या फिर आपकी पॉकेट में सॉल्ट है, योर गर्लफ्रेंड विल नॉट बी एबल टू सी इट, लेकिन जो टॉक्सिसिटी का माहौल बन रहा होगा आप उसे डेफो मिनिमाइज कर सकेंगे एंड यू कैन क्लॉक दैट एज अ टिप फॉर लाइफ। इसे यूज करके देखो, गर्लफ्रेंड ने अगर आपके साथ सेम कॉफी ग्लास में एक स्ट्रॉ डाल के शेयर नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। ऑन दैट नोट, I really don't want another new name. Hit me up on Insta या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead, जाना, do what you need to do. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: रिलेशनशिप में भसड़ करते टाइम आपने ये नहीं सोचा था ना दैट इज गोइंग टू एंड अप इन अ रियली हार्डकोर कॉन्वर्सेशन.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: मिर्ची रोशी
0: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी. इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: किसी ने सही कहा था, लव इज शेयरिंग योर पॉपकॉर्न एंड आई स्वेयर इट इज ट्रू. सो आई न्यू दिस गाय फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई थिंक हम 3-4 साल से दोस्त थे एंड ही वॉज डेटिंग समवन. उसका ब्रेकअप हो गया और फिर वो और मैं काफ़ी अक्सर हैंग आउट करते थे. एंड वन थिंग अबाउट हिम वॉज कि हम जब भी कोई फिल्म देखने जाते थे, ही वुड नेवर शेयर हिज पॉपकॉर्न विद एनीबडी. एंड अ कपल ऑफ टाइम्स लेटर आई रियलाइज कि अब वो मेरे साथ अपना पॉपकॉर्न शेयर कर रहा है. एंड I was looking at him very suspiciously because I knew something was up. वो अपना popcorn मेरे साथ शेयर कर रहा है. That means that इसके feelings तो नहीं हो रहे हैं. And lo and behold, जो चौथी बार उसने मेरे साथ popcorn शेयर किया, film का interval हुआ. He was like, I have to tell you something. We need to talk. And I was like, I already knew it, baby. तो अपना popcorn मेरे साथ शेयर कर रहा है. And he was like, इसका क्या मतलब है? I said, you like me? He was like, तुझे कैसे पता चला? I was like, popcorn. And it's actually true. क्या आप अपना पॉपकॉर्न किसी भी इंसान के साथ शेयर करते हो, और do you save it for just somebody you have the hot spot?

हाँ या नहीं, करोबरेट माय थ्योरी, सेंड मी योर नंबर, वी विल टॉक अबाउट इट ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. और अगर ऐसे ही डिटेक्टिव टेस्ट चाहते हो फ्रॉम मी, लेट्स गेट टॉकिंग बेबी. एंड व्हाइल यू डू ऑल ऑफ दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
0: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: तुम्हारे दिल के साथ तो बहुत लोगों ने खेला है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे दिमाग के साथ कोई खेलना चाहता है? I want to do that, baby.
2: Love game. Love game.
1: It is time to play the love game. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. Send me your number on Insta या FB and I promise I'll call you so that we can play the love game. और मेरे साथ लाइन पर अभी रोशन है. Hi रोशन.
3: Hi रोशी, I'm so excited. रोशी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या बताऊँ आपको.
1: थैंक यू सो मच.
3: बात से करने की इच्छा हो रही थी आपसे, आज आपने फाइनली फोन किया, थैंक यू सो मच.
1: दैट्स व्हाट आई टेल पीपल कि मतलब मुझे देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, मतलब आई कॉल यार हो जाती है देर. अच्छा मैं गंदा गाती हूँ मुझे पता है, बट दिस इज नॉट अबाउट मी.
3: आप ये देर के लिए तो हम पूरी जिंदगी वेट कर सकते हैं रोशी, आप चिंता मत कीजिए.
1: यू आर सच अ ड्रामेबाज, आप तैयार हो ड्रामेबाज मेरे साथ लव गेम खेलने के लिए?
3: जी जरूर.
1: अच्छा ठीक है, तो अब मैं आपको तीन ऐसे हिंदी पिक्चर के डायलॉग्स बताऊंगी अंग्रेजी में, आपको मुझे बताना है कि उसका हिंदी में ओरिजिनल डायलॉग क्या था. ठीक है?
3: ठीक है.
1: आपका पहला लाइन है क्लोजर क्लोजर क्लोजर. अच्छा मैं आपको पिक्चर का भी क्यू दे देती हूँ कि दिस इज फ्रॉम दिल तो पागल है.
3: पास और पास और ज्यादा पास.
1: यू आर स्पॉट ऑन, मुझे लगा यू आर जस्ट सेइंग पास एज इन लाइक आई वॉन्ट टू पास दिस क्वेश्चन, बट आपने तो बहुत सही बताया ये. आर यू रेडी फॉर द सेकंड वन?
3: जी जरूर.
1: ओके देयर यू गो. इफ यू वॉन्ट समथिंग विद ऑल योर हार्ट द इंटायर यूनिवर्स विल ट्राई टू गिव इट टू यू.
3: अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरे कायनात उसे तुमसे मिलाने की चाहत में लग जाती है.
1: मैन तू तो सीरियस बॉलीवुड बाफ है यार.
3: हाँ.
1: अच्छा
3: देखकर बड़ा हुआ ना.
1: अच्छा ठीक है, ये तेरा थर्ड है. इफ यू गेट दिस राइट यू आर गेटिंग रोशिफिकेशन. ओके सो योर थर्ड डायलॉग इज योर स्माइल इज सो डेंजरस, इफ आई हैड अ हार्ट आई वुड हैव डेफिनेटली

0: फॉलन फॉर इट.
1: तुम्हारी स्माइल इतनी डेंजरस है ना, अगर मेरे पास दिल होता ना कब का तुम्हारे पीछे आ जाता. ये जवानी है दीवानी से ना.
0: डूड यू आर अमेजिंग. ये सिर्फ आपके लिए.
2: यू हैव बीन रोशिफाइड.
0: ब्रो तू कितनी पिक्चरें देखता है यार, क्या करता है जिंदगी में?
1: वही थोड़ी बहुत पिक्चरें देख लेता हूँ, डायलॉग दिमाग में चिपक जाते हैं, क्या करें.
0: बहुत सही. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू कि आप जिंदगी में करते क्या हो? बॉलीवुड बॉलीवुड में काम तो नहीं करते?
1: नहीं नहीं, मैं एक्चुअली फिलहाल तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ. कभी कभी बीच में लिख लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा गा भी लेता हूँ बस.
0: सीरियसली? अच्छा ठीक है, तो फिर जाने से पहले aren't you going to like sing a song for me?
1: हाँ हाँ, तो ये एक्चुअली केके का एक गाना है.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
0: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।

0: में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भी

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: I hate to say this because honestly, मुझे upfront और honest लोग बहुत पसंद हैं. But the truth is, psychology के हिसाब से, if you're a guy और आप एक लड़की को chase करने की कोशिश कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो आप में interested हो, you'll have to be a little bit mysterious. और उसकी हर phone call का जवाब नहीं देना है, हर message का immediately response नहीं करना है. Simply because psychology के हिसाब से, we feel very attracted to people जो initially हमें लगता है कि हमारे लिए पाना मुश्किल है. अगर आप अपनी आंखें बंद करके सोचोगे तो you will realize कि every time you fell in love with somebody जिसके बारे में आप दीवाने थे, वो इंसान आपको easily available नहीं था. So I hate to say this क्योंकि अभी मैं एक psychology की research paper पढ़ रही थी and it said that women and men are both equally attracted to people जो थोड़े से mysterious और थोड़े से like hard to get होते हैं. तो this actually works in the dating scheme of things. तो मैं मतलब accept नहीं भी करना चाहती हूँ, but कहीं ना कहीं I realize that is actually the truth of dating. तो अगर आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ try कर दिया the easy way and that person is not giving you bhav, then you can try this idea, but I personally don't really buy it. Although मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, I've continuously fallen in love with people जो hard to find और hard to chase होते हैं. और अगर आप भी मेरी तरह एक नंबर के गधे हो, why don't you hit me up and maybe we can compare our sad life की tragic stories. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है R-O-C-H-I-E. So hit me up on the gram या Facebook and while you do that, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची.

देयर आर दीस टू पीपल हु डिसाइड टू गेट मैरिड, एक दूसरे को जानते नहीं है, इट्स एन अरेंज्ड मैरिज सेटअप, बट दे टेल यू कि ये अरेंज्ड मैरिज भी एक फंक्शनल रियलिटी है, लोगों को इस शादी में रहकर भी प्यार हो सकता है. भाई मैंने सिर्फ 6 एपिसोड्स देखे अभी तक एंड आई वॉन्ट टू डू अरेंज मैरिज राइट नाउ. एक्सेप्ट मेरी नानी को डिमेंशिया हो गया और वो मुझे मेरी दूसरी कजन के साथ कन्फ्यूज कर रही है जिसका बच्चा हो चुका है, तो मेरी नानी मुझसे पूछी कि तुम्हारा तो बच्चा हो गया, तुमको फिर से शादी क्यों करनी है बेटा. अब नानी को मैं कैसे समझाऊं. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या आपको भी ऐसी बीमारी है जिसमें आप कुछ रोमांटिक देखते हो और सडनली आपका मन करता है कि यार काश मैं रिलेशनशिप में होती, काश मैं शादी कर लेती. अगर हाँ तो हमें नोट्स डेफो कंपेयर कर लेने चाहिए. एंड टू डू दैट आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड डार्लिंग, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते हैं.

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मम्मी को लगता है कि आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज यू आर हिटिंग ऑन योर ट्यूशन टीचर. आपका उसके साथ एक, एज माय नानी कॉल्स इट, अफेयर चल रहा है. ऐसी अश्लील बातें आप किसके साथ शेयर करोगे?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: द राइट आंसर टू दैट इज मेरे साथ. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. यू कैन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वट एवर योर सीक्रेट कन्फेशन इज. मैं सिर्फ आपको रोशिफाई करना चाहती हूँ और थोड़े से मजे लेना चाहती हूँ. व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
3: Hi, how are you?
1: I am very good, but you are obviously a very naughty person.
3: Ah, totally.
1: क्या बात कर रहे हो? अच्छा, आपने मुझे Instagram पे बताया था कि आपने कैसी गंदी काम किए हैं. But why don't you tell me, like, संक्षिप्त में कहते हैं कि exaggerate करके क्या कहते हैं? मतलब तसल्ली से बताओ यार कि कर क्या रहे हो आप अपनी जिंदगी में.
3: So what I'm doing right now is, हाँ. So मेरा 6 years का relation है, हुँ. But somehow मेरा boyfriend अब फर्दर studies के लिए कैनेडा चला गया है. दो आई लव हिम अ लॉट, बट आपको पता है वुमेन नीड्स तो एक चीज है ही है. तो व्हाट आई एम डूइंग नाउडेज इज आई एम जस्ट डाउनलोडिंग डेटिंग ऐप ऑन वीकेंड, हैविंग फन.

0: एंड फिर मंडे को अनइंस्टॉल करके बैक टू बेसिक्स.
1: अच्छा तो एक बात बताओ, ये वीकेंड पे आपके बॉयफ्रेंड को पता नहीं चलता है कि बंदी गायब है फॉर लॉन्ग आवर्स एंड यू नो फोन इज अनरीचेबल, फोन करता तो उठाती नहीं है, उसका क्या करते हैं?
0: नहीं मतलब ही ट्रस्ट मी अ लॉट, सो
1: ओह हाउ नाइस
0: दैट आई एम हैंगिंग आउट, सो या चल जाता है.
1: चल जाता है यार, अगर बंदा ट्रस्ट करे देन इट बिकम्स इजियर टू चीट. ऐसे सिचुएशन में क्या मैं आपके लिए रोशिफिकेशन कर सकती हूँ या एक और डेटिंग ऐप सजेस्ट कर सकती हूँ? विच वन ऑफ द टू वुड यू प्रेफर?
0: एनीथिंग जो आपको पसंद आए इस वक्त.
1: क्या बात कर रही है? अच्छा मैं तुझे ना रोशिफाई कर देती हूँ. आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर बैड कर्मा, हियर यू गो.
2: यू हैव बीन रोशिफाइड.
1: Babe, you are absolutely killer. It was really nice talking to you. और अगर आपकी भी जिंदगी में ना आपने ऐसे कोई गंदे काम किए, मतलब बॉयफ्रेंड कनाडा में ही ट्रस्ट यू सो मच एंड यू आर लाइक हाँ तो ठीक है, ट्रस्ट को वीकेंड पे साइड पे रख देते, दैट डजंट काउंट ऑन वीकेंड्स डज इट? आई वांट टू हियर योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी एंड टेल मी ऑल अबाउट इट. हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, बट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें, व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27 एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कभी कभी मुझे लगता है कि मैं काफी स्मार्ट हूँ. मतलब सोच रहे हो इसके बारे में, भगवान ने मुझे इतनी क्यूट शक्ल दी है, ऊपर से इतना दिमाग भी दे दिया कि जब मैं फाइनली एक डेटिंग ऐप पर गई तो मैंने जब सब कुछ एक्टिवेट किया ना, तब

संडे को दोपहर के 2 बज रहे थे. नाउ आई डिड नॉट नो दिस बट रिसर्च के हिसाब से संडे को 2 बजे इज द बेस्ट टाइम टू गो एक्टिव ऑन योर डेटिंग ऐप इफ यू वॉन्ट टू बी स्वाइप राइट. वो इसलिए होता है बिकॉज संडे आफ्टरनून के टाइम तक सारी दुनिया हंगओवर होती है. सारी दुनिया इज फीलिंग सॉरी फॉर इटसेल्फ कि यार जिंदगी में प्यार नहीं है, सब कुछ है लेकिन एक कंपेनियन नहीं है. एंड लिटरली उस समय संडे को दोपहर को एवरीवन इज इंडोर्स और उन्हें नींद आ रही होती है या नहीं वो यूजुअली अपने फ़ोन पर होते हैं टाइम पास करने के लिए. दे आर चेकिंग आउट द डेटिंग एप्स एंड वोला हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके लिए फ्यूचर पार्टनर आपका वहाँ इंतजार कर रहा हो. सो इफ यू वांट टू एक्चुअली एक्टिवेट योर डेटिंग ऐप संडे 2 PM इज द बेस्ट टाइम टू डू इट. और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरी जान यू जस्ट हैव टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड यू नो व्हाट आई ऑलवेज से, जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई love you.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई, मजा आ जा।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Tera kya hoga, Kalia?
4: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
3: Ab Mirchi kha.
5: Radio Mirchi, it's hot.

जिलो थोड़ा थोड़ा मर लो।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, गाना बजा दूं।
1: रेडियो मिर्ची के साथ 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो एंड वेलकम। आज ना एक ऐसे राइटर के बारे में बात करेंगे जिनका कमांड सिर्फ एक लैंग्वेज पे नहीं था, वो जितनी खूबसूरती से हिंदी में लिख लेते थे उतनी ही खूबसूरती से उर्दू में भी लिख लेते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी फिल्में नहीं बनाई, अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि जब वो फिल्म बनाते थे ना तो पूरी तबीयत से बनाते थे, पूरा अपना टाइम लेकर के बनाते थे। जब आगे बढ़ जाते थे और उन्हें लगता था कि ये जो पोर्शन मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ वो इतने बेहतर नहीं है, तो फिर से सब कुछ स्क्रैप करके फिर से नया शूट करते थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि उनका ऑडियंस जब सिनेमा हॉल से उठे तो ये कहते हुए उठे कि वाह कमाल अमरोही ने क्या फिल्म बनाई। तो आज कमाल साहब की बात करेंगे जिन्होंने मीना कुमारी के साथ बनाई पाकीज़ा, हेमा मालिनी के साथ बनाई रज़िया सुल्तान, मधुबाला के साथ बनाई महल। तो बस कहीं भी मत जाना, श्रेया के साथ यहीं रुकना, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जींस, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

जब भी वो अपना लिखा कुछ पढ़ते थे ना, तो लोगों की महफिल जम जाती थी और तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज दूर तक सुनाई देती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। अच्छा, अमरोही कैसे, ये नाम कैसे पता? ये उनका सरनेम नहीं था एक्चुअली, ये पैदा हुए थे यूपी के एक छोटी सी जगह जिसका नाम था अमरोहा में। मुंबई गए, वहाँ काम करने लगे, लेकिन अपने अमरोहा को बहुत मिस करते थे, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया कमाल अमरोहा से अमरोही, वही नाम जिससे हम उन्हें पहचानते हैं। अच्छा, कमाल अमरोही को बॉलीवुड में, ओ सॉरी, उस टाइम तो इसे इंडियन सिनेमा कहते थे, यहाँ पर लेकर के कौन आया अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कभी न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर,
2: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
1: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट,
2: द माइक इज रेडी। आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक। अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
4: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

वो क्या कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। आपको पता है उनको इंडियन सिनेमा में कौन लेकर के आया था? वो जिनका नाम लेते हुए भी इस समय ना मेरे हाथ कानों को छू लेते हैं। इट वॉज नन अदर देन केएल सहगल साहब। तो केएल सहगल कमाल साहब से मिले थे एक पार्टी में। वहाँ पर कमाल साहब को कोई खास जानता नहीं था। केएल सहगल से वो एज अ फैन बॉय मिलने गए और उनकी तारीफ में अपना लिखा हुआ कुछ पढ़ा। सहगल साहब उनकी लिखावट से इतने इम्प्रेस हुए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये नया लड़का जरूर इंडियन फिल्म्स में कुछ कर सकता है। उन्होंने ऑफर किया कि चलो भाई मेरे साथ बॉम्बे चलो, तुम यहाँ के लिए नहीं वहाँ के लिए बने हो। बस कमाल साहब को तो एक मौका चाहिए था। वो मुंबई पहुंच गए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई शुराब मोदी से, जिनके साथ उन्होंने जेलर, पुकार इन दो फिल्मों पे काम किया। पर वो कौन सी फिल्म थी जिसने रातों रात कमाल साहब का नाम हर घर में पहुंचा दिया? अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: वाराणसी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्विट एडिसन।
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
4: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
7: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
8: आई आई आई आई आई आई आई।

अरमान। इस फिल्म से बहुत सारे लेजेंड्स अपनी शुरुआत करने वाले थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू एक ऐसी फिल्म बनी जिसने बहुत सारे उन कलाकारों को पहली बार जगा दी जो इंडियन सिनेमा में आने वाले कई सालों तक राज करने वाले थे। कमाल अमरोही साहब की पहली गोस्ट फिल्म जिसका नाम था महल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया मधुबाला जी ने और उनपे एक गाना पिक्चराइज किया गया था आएगा आने वाला, जो कि गाया लता जी ने। लता जी ने वैसे बहुत सारे गाने गाए थे इससे पहले, लेकिन उनका गाया हुआ ये गाना जब ऑल इंडिया रेडियो पे आया ना, तो वहाँ के फोन ना बजते हुए रुक नहीं रहे थे ये पूछने के लिए कि गाना किसने गाया है। सो इन अ वे लता जी का भी ये डेब्यू था, विच मेड हर अ स्टार। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें विद मी श्रेया। सो वापस आओ।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अच्छा पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म बनाता था ना, तो वो इक्वली इन्वेस्टेड, इक्वली इन्वॉल्व होता था इन द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, इन द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म. मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे लेकिन डायरेक्टर का इनपुट सबसे इम्पोर्टेंट. और अगर कहीं वो कमाल साहब की फिल्म, तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तक में उतर आते थे, इतनी बारीकियां. आपको पता है फिल्म पाकीज़ा जो उन्होंने मीना कुमारी यानी अपनी वाइफ के साथ बनाई थी, इस फिल्म को बनाने में कई साल लग गए. एक तो मीना कुमारी और कमाल साहब के बीच में मनमुटाव हो गया था, दोनों अलग हो गए थे, तो इसलिए फिल्म रुक गई थी 10 सालों के लिए. उसके बाद जब बननी भी शुरू हुई तो कमाल साहब वो सो पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग कि जो एक्स्ट्रास होते थे ना, उनकी ज्वेलरी, उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग सब वो खुद किया करते थे. अब भाई इस फिल्म की बात हुई है तो इसी फिल्म का गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. सो पाकीज़ा का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू. मेरा नाम है श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आज एक ऐसे डायरेक्टर, एक ऐसे राइटर के बारे में बात हो रही है पुरानी जीन्स पे, जिनके लिए कह सकते हैं दैट ही वाज मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, कमाल अमरोही साहब, जो जब फिल्म बनाते थे ना तो तबीयत से बनाते थे, पूरा समय लेकर के बनाते थे। इसीलिए अपने पूरे टेन्योर में उन्होंने सिर्फ चार फिल्में बनाई। जब उन्होंने महल बनाई, जो कि फर्स्ट हॉरर फिल्म कही जाती है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर कमर्शियल हॉरर फिल्म ऑफ इंडिया कही जाती है, जब वो बना रहे थे ना, तो उसके डायलॉग्स में भी इक्वली इन्वॉल्व थे। इस फिल्म के डायलॉग्स पूरे इंडिया में पॉपुलर हुए। एक डायलॉग था, मुझे जरा होश में आने दो, मैं खामोश रहना चाहता हूँ, विच बिकेम इमेंसली पॉपुलर। और दूसरा पता कौन सा था? स्लो पॉइजन अक्सर मीठे होते हैं और धोखे अक्सर हसीन। मुझे लगता है कि जब भी उस जमाने में कोई अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा खाता था तो ये डायलॉग जरूर बोलता होगा। कमाल साहब की आज कमाल की बातें विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस। बस वापस

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें, व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इससे पहले तक इंडियन सिनेमा में ऐसा नहीं हुआ था जो कमाल साहब ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू महल फिल्म के साथ किया। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही की बात हो रही है, उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी महल। पहली बार ऐसा हुआ जब ये भूत वाली फिल्म में एक बैकग्राउंड गाना दिया गया और वो थ्रू आउट द फिल्म कैरी फॉरवर्ड रहा। मतलब वो गाना इंडिकेट करता था कि फिल्म में अब कुछ भूतिया होने वाला है, फिल्म में अब कुछ सस्पेंस आने वाला है ना। कमाल साहब

की शुरुआत करने के बाद इस ट्रेंड को इंडिया की हर सस्पेंस, हर मिस्ट्री फिल्म ने, हर घोस्ट फिल्म ने फिर फॉलो किया। फिर चाहे वो मधुमती हो, वो कौन थी हो, या फिर मेरा साया। तो इसकी शुरुआत करने वाले वही थे अपने कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पे आज उन्हीं की बातें, बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, आजकल एक ही डायरेक्टर कई सारी फिल्में बनाते हैं, लेकिन कमाल अमरोही साहब ने अपने बहुत बड़े करियर में सिर्फ 4 फिल्में बनाई, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे कि वो क्वालिटी वर्क बनाए। वो हमेशा ये चाहते थे कि जब भी ऑडियंस सिनेमा हॉल से निकले ना, तो ये याद करके निकले कि उन्होंने कमाल अमरोही की फिल्म देखी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। वो 4 फिल्में जो कमाल साहब ने बनाई, एक तो महल, दूसरी पाकीज़ा, तीसरी रजिया सुल्तान और एक चौथी थी जिसका नाम था दायरा। इन सबके बीच में ना एक फिल्म बनाने का सपना उनका अधूरा रह गया। वो कौन सी फिल्म थी अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कमाल अमरोही साहब जैसे इंसान जब किसी को तोहफा देंगे तो वो भी तो एकदम कमाल, एकदम नायाब होगा। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। हाँ, तो कमाल साहब की बात हो रही है, उनकी और मीना कुमारी की शादी की पहली रात। कमाल साहब मीना कुमारी के पास गए। अब भाई वो ट्रेडिशन होता है ना कि आप शादी की पहली रात कोई तोहफा दोगे अपनी वाइफ को। कमाल साहब गए मीना कुमारी के पास और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जो जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा मैं तुम्हारे ऊपर जिससे ये दुनिया जब भी तुम्हारा नाम लेगी तो वो फिल्म का नाम भी साथ में आएगा। ये फिल्म उन्होंने बनाई। ऑफकोर्स काफी साल लग गए इस फिल्म को बनने में क्योंकि दोनों बीच में अलग हो गए थे, बट दे केम बैक टुगेदर टू कम्प्लीट दिस फिल्म। फिल्म का नाम पाकीज़ा, जिसमें बेहद खूबसूरत लगी मीना कुमारी। तो ये थी पाकीज़ा की शुरुआत होने की कहानी। एक और कहानी बाकी है अभी कमाल साहब की एक अधूरी फिल्म की, बताऊंगी उसके बारे में भी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा बैक टू बैक गाना सुनेगा
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

महल बनाई इन्होंने, पाकीजा बनाई इन्होंने, रजिया सुल्तान बनाई इन्होंने। अब इनका ड्रीम था आखिरी मुगल बनाने का। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही साहब की। तो मैं बता रही थी कि कैसे पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में इन्होंने बनाई और एक फिल्म पे काम कर रहे थे। इनका ड्रीम था हिस्ट्री पे एक फिल्म बनाने का।

और उसका नाम इन्होंने रखा था आखिरी मुगल। इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने आधी लिख ली थी और स्क्रिप्ट से पहले इसके गाने भी बन गए थे, पर ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। उनके जाने के बाद लोगों ने इस स्क्रिप्ट को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कमाल साहब की लिखी हुई ये कहानी कहीं खो गई। लेकिन हाँ, गानों का कुछ हुआ। क्या हुआ? आपको तो पता ही है, ऐसे इतनी जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं बताती हूँ। गाने सुन करके वापस आओ, विल लेट यू नो पूरी कहानी, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं पर बच्चन एक ही होता है
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है एक ही होता है जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

1989 में एक फिल्म आई जिसने कमाल अमरोही साहब की अधूरी फिल्म आखिरी मुगल का एक गाना ले लिया, एक गाना यूज किया। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। सो एक अधूरी फिल्म वो छोड़ करके गए जिसका नाम था आखिरी मुगल। उनका ये ड्रीम था कि वो एक ऐसी फिल्म बनाए जो कि इंडिया की हिस्ट्री पे हो। इस फिल्म का नाम उन्होंने रखा था आखिरी मुगल। कमाल साहब वॉज प्लानिंग द फिल्म, आधी फिल्म लिख ली थी लेकिन इसके गाने कई सारे रिकॉर्ड कर लिए थे। अब फिल्म तो बीच में रुक गई थी, तो पता है उन्होंने एक गाना सेल किया और ये उन्होंने दिया था टू द मेकर्स ऑफ अ फिल्म जिसका नाम था जिस्म का रिश्ता। 1989 में ये फिल्म आई थी और इसी फिल्म में रफी साहब का एक गाना यूज हुआ था जो कि आखिरी मुगल के लिए बनाया गया था। पुरानी जीन्स पर कमाल अमरोही साहब की ये कमाल की बातें आज चलती रहेंगी, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है। चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
8: hey! तुमने कभी किसी से प्यार किया?
9: किया!
8: कभी किसी को

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हेट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

0: कई साल पहले की ये बात है।
1: बोलो माँ, चुप क्यों हो गए?
0: भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में,

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
2: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
1: अब मिर्ची खा.
3: Radio Mirchi, it's hot.

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए।

0: न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर।
1: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
0: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट,
1: द माइक इज रेडी। आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक। अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। रेडियो मिर्ची, इट्स ऑन
2: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, कबड़क कबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आरके जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया

शाम कन्हाई, ले जाओ इसको घर। राधे ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर। देश मान कर चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वो

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Ego suffering create करता है, जिसके कारण हम अपनी life enjoy नहीं कर पाते हैं. आइए इस बारे में जानें.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया. तो अभी मैं इन दोनों दोस्तों क्या बोलूं, क्योंकि अभी इस वक्त भी झगड़ा चल रहा है और मैंने समझाने की कोशिश की तो दोनों मेरे पे बरस पड़े. जब अकेले फोन किया, तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, तुमको लगता मैं ही गलत हूँ. मैंने कहा भाई मैं गलत सही पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ छोटी सी जिंदगी है यार, हंस खेल के जी लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है. तो कहता नहीं, हम तो सॉरी नहीं बोलेंगे,
3: हम तो इतना ही कर सकते हैं. एक्चुअली वी कांट डू अ लॉट फॉर अदर पीपल. हम इंस्पायर कर सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, हम वैसा रोल प्ले कर सकते हैं. इट इज देयर अंडरस्टैंडिंग कि हम इतनी छोटी बात पर क्यों लड़ रहे हैं, हम क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं. जैसे आपने कहा कि हम मिले हैं मिलने के लिए, कुछ मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए, तो वो तो उनकी एक रियलाइजेशन है. दैट इज द प्रॉब्लम ना, वो ईगो हमें लाइफ एंजॉय नहीं करने देते. ईगो सफरिंग क्रिएट करते हैं. ईगो को अगर हम पार हो जाएं, देन ओनली वी कैन एंजॉय लाइफ. ठीक है, आप डिफरेंट है, आपको जो खाना है आप खाओ, मुझे जो खाना है मैं खाऊं, आपको जहां जाना है आप जाओ, मुझे जहां जाना है मैं जाऊं. वी डोंट इंटरफेयर एंड कंट्रोल द अदर पर्सन. ईगो इज ऑलवेज वेरी वेरी कंट्रोलिंग एंड सफोकेटिंग द अदर.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। अब एक भाई साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरा जो बेटा है वो MBBS फोर्थ ईयर में है, मैं उसे मेडिटेशन प्रैक्टिस करना कैसे सिखाऊं, वो रिएक्ट करता है आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनने से ही, और बिल्कुल पसंद नहीं करता है सजेशन, और कभी कभी उसे ऐसा लगता है, वो कहता है कि ये ओल्ड पीपल के लिए, बूढ़े लोगों के लिए है, वो सुबह उठता भी नहीं है और ना ही जल्दी सोता है। अब मैं क्या करूं?
2: कहीं ना कहीं ये भी हमारी कंट्री में एक बहुत डीप बिलीव सिस्टम है कि स्पिरिचुअलिटी बूढ़े लोगों के लिए है या आफ्टर 60 है। ये बिल्कुल ऐसे कहना है कि पहले तो लाइफ के सारे एग्जाम्स दे लो, और उसमें कहीं पास हुए कहीं फेल हुए, और फिर पढ़ाई पढ़ेंगे कि वो एग्जाम्स कैसे देने थे। तो स्पिरिचुअलिटी एक वे ऑफ लाइफ आपको सिखाती है। अगर वो वे ऑफ लाइफ हम आज नहीं सीखते, बाद में जब कई लोग आते हैं ना हमारे पास भी, तो उनको बहुत बड़ा रिग्रेट यही रहता है कि हम पहले क्यों नहीं आए। अगर हम पहले आते तो हम इस प्रॉब्लम को ऐसे डील करते, रिश्तों में ऐसे चलते। सो अगेन, इसको ये माइंडसेट नहीं बनाए दैट इट इज़ फॉर ओल्ड पीपल, क्योंकि हम है ही स्पिरिट, वी आर अ स्पिरिचुअल बींग इन अ फिजिकल बॉडी। हम फिजिकल नहीं है, स्पिरिचुअल बींग इन अ फिजिकल बॉडी है। तो स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ। सेकेंडली, हम किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। इंस्पायर करने का तरीका भी बहुत बोलने का नहीं होता, आप ये करो आप ये करो, ये जो कई बार थोड़ा नैगिंग जैसा हो जाता है बार बार, मुझे नहीं लगता आज की जेनरेशन पर ये बहुत वर्क करता है। पहले करता था कि नहीं वो भी नहीं मुझे पता, लेकिन जो चीज़ वर्क करती है वो है किसी का ट्रांसफॉर्मेशन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो फादर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं या स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल जीते हैं, और उनके अंदर का जो चेंज है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो काम है, स्टेबल है, डिसीजन ले पाते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ही किसी को इंस्पायर कर सकता है। तो इसीलिए अगर उन्होंने राय दे दी, उन्होंने रिक्वेस्ट कर लिया, अभी वो ऐसा वे ऑफ लाइफ अगर बनाएंगे, सो मे बी दैट विल इंस्पायर द चाइल्ड।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: जब हम हॉट फील कर रहे होते हैं तब क्या करें?
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: जब ये खाने वाली बात हुई तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सारे क्विजिन मिलते हैं।
5: और क्या है उसमें?
4: उसमें भी झगड़ा हो गया कि पिछली बार में हमने ये किया था तो मेरी बात तो तुम कभी मानोगे नहीं, हर बार हम ऐसी जगह जाएंगे। मैंने कहा यार इस बात का तो कोई तोड़ नहीं है ना कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको हर बात से प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं दोनों को ये लगता है कि तुम दूसरे के साइड लेते हो।
5: मेरी बात
4: मेरी बात नहीं मान रहे,
5: क्या है मेरी बात
4: नहीं मान रहे,
5: मेरी बात माननी चाहिए, माना जब मेरे अनुसार होगा तो मैं खुश होऊंगा।
4: तो ऐसे में तोड़ के सामने वाले को अगर समझाना, खुद को भी समझाना, कभी कभी ऐसा हो सकता है मैं भी करता हूँ, तो क्या व्हाट इज द साइन जहाँ पे ऐसा लगे यार अब इस बात को काटनी है मुझे?
5: साइन यही है, वो साइन सबसे बड़ा साइन है कि अगर मुझे हर्ट हो रहा है, ये उस व्यक्ति को रियलाइज करना है कि अगर मैं इंसल्टेड फील हो रहा हूँ या मुझे लगता है उसको ये फील हो रहा है ना, मेरी बात नहीं मानी जाती, मेरी वैल्यू नहीं है, मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते।

0: दैट मीन्स आपको ईगो है, आप हर्ट हो रहे हैं ना, सामने वाला तो हर्ट नहीं हो रहा। तो जब हम हर्ट हो रहे हैं तो हमें साइलेंस में देखना चाहिए मैं कौन सी बात से इतना अटैच्ड हूँ, क्योंकि मेरे वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू डांस टू आवर ट्यून्स, ये होने वाला ही नहीं है। और अगर हम थोड़ा सा इजी नहीं होते तो फिर हम दर्द में रहेंगे। इट इज लाइक आई एम गोइंग टू लिव इन पेन।
1: मैंने बहुत खूबसूरत सी एक कहीं कोट पढ़ा तो मुझे अभी अचानक याद आ गया कि जब हमारे नेल्स बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, हम नाखूनों को काटते हैं, उंगलियों को नहीं। उसी तरह जब हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए तो ईगो को काटिए, रिलेशनशिप को नहीं।
0: Absolutely.
1: तो बहुत खूबसूरत लगा मुझे ये, तो मैंने कहा ये।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का, उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। श्रेया, बबलू वर्मा जो हैं वो सुरेश वर्मा के बेटे हैं, बख्शी का तालाब लखनऊ से लिख रहे हैं कि मैं आपका कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 7 से 7:30 तक अपनी कार ड्राइव करते हुए स्कूल जाते समय सुनता हूं, और ग्रेजुएट 2008 में मैं कर रहा था तो मेरे एनसीसी के सर ने मुझे ऑलवेज बी पॉजिटिव का थॉट दिया और हर घटना में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता हूँ मैं, ये सोचता भी हूँ। आज तक मेरे साथ जो भी हुआ सब अच्छा होता हुआ ये मैं ये सोचता हूँ। मेरा प्रश्न सिस्टर श्रेया से ये है कि हम जो योजना बनाते हैं वो कार्य लगातार नहीं हो पाता और कुछ और ही हो जाता है, ऐसा क्यों?
0: हम कई बार ये सबको सिखाते हैं कि अच्छा सोचो, थिंक पॉजिटिव, और उसके बाद भी हम कई बार देखते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा।
1: जी,
0: तो हमें लगता है मैंने जैसा सोचा वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि लॉ भी है संकल्प से सिद्धि। लेकिन इसमें एक चीज और है, एक फैक्टर जो हमें दिखाई नहीं देता पर हर समय काम कर रहा है।
1: जी,
0: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरकनेक्टेड है।
1: जी,
0: तो जो हमने पास्ट में किया था, जो एनर्जी हमने भेजी थी, जो कर्म हमने किया था, वो कई बार लौट करके आता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अ सिचुएशन कि आपके घर में कोई बीमार है, आप अच्छा सोच रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप हर बार जब जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि नहीं अभी ठीक नहीं है, या पैरामीटर्स ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लगता है मैं तो सही सोच रहा हूँ फिर ये ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं।
1: जी,
0: हम सही सिर्फ इसलिए नहीं सोचते हैं कि हम सही सोचेंगे तो बाहर की जो सिचुएशन है वो हमेशा ही चेंज हो जाएगी।
1: जी,
0: क्योंकि बाहर की जो सीन है वो उस व्यक्ति का भी कार्मिक अकाउंट है, आपका भी कोई पुराना कार्मिक अकाउंट है, लेकिन फिर भी सही सोचना क्यों है? क्योंकि फिर भी सही सोचने से कम हमारा मन तो शांत और स्टेबल है, और जब हमारा मन शांत और स्टेबल है तो जो भी चैलेंज होगा हम उसको फेस कर पाते हैं। There is also a possibility कि आपने बिल्कुल सही सोचा, उसके बाद भी वो बीमारी ठीक नहीं हुई। ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। हो सकता है कुछ पास्ट का कार्मिक अकाउंट है या कोई बीमारी है, लेकिन अगर वो इंक्रीज भी हो जाती है, टू एन एक्सटेंट वो शरीर भी छोड़ देते हैं, तो भी अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप इतने बड़ी सिचुएशन को भी बहुत स्टेबिलिटी से फेस करके उनको दर्द भरी विदाई देने की जगह दुआओं भरी विदाई दे पाएंगे। सो ट्रू, जरूरी नहीं है हर चीज हमारे अनुसार हो, बिकॉज दैट वन फैक्टर, वो वन फैक्टर जो है पास्ट का जो हमें याद नहीं रहता। लेकिन हम सोल ऑन अ जर्नी है, तो वो सोल ने जो जो कर लिया है, जो एनर्जी ऑलरेडी यूनिवर्स में भेज दी है, वो किसी ना किसी रूप में, चाहे बीमारी के रूप में, धन का पेपर, डिफिकल्ट रिलेशनशिप, कोई चैलेंज के रूप में आता है, आज सही सोचेंगे तो वो सेटल हो जाएगा। लेकिन आज भी अगर गलत सोचेंगे सो देयर चांसेस कि आप उसको और बढ़ा रहे।
2: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi. It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: ईगो है क्या? आइए ईगो के बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। मैं एक एक वीडियो

0: रहा था तो उसमें बहुत खूबसूरत सी बात, एक बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम कोच हैं पैट राइली, तो वो कहते हैं कि ईगो इज द डिजीज ऑफ मी, जहां मैं आ गया, मैं जहां हावी हो गया ना, वो ही ईगो है। बहुत क्लियर शब्दों में उन्होंने सिखाया। और वो दो चीजें और उसमें कहते हैं कि जब सेल्फ इमेज जो है उसका जो कंसर्न है वो ऑब्सेशन में बदल जाए, और जब कॉन्फिडेंस जो है वो एरोगेंस में बदल जाए, वो ईगो है। और फिर वो बहुत लंबी चौड़ी बात कहते हैं, तो मुझे उसमें ये डिजीज ऑफ मी बड़ा अच्छा लगा। और एक और बहुत साल पहले मैं एक चीज देख रहा था, तो वो लीडरशिप की सेमिनार ले रहे थे वो इंसान, वो कह रहे थे कि वी मस्ट को हमको हमेशा मारना है। वी मस्ट क्या है? वी, आई, मी, अस। तो वी मस्ट जो है ये डिजीज है, इसको काटो, हमेशा दूसरों के बारे में सोचो, यू देम। तो मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी है, लेकिन ये बोलना बड़ा आसान है और इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो है इंडिविजुअल हैं, हम अपने बारे में ही सोचते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सेट्रा। तो ये भी क्या अहंकार का ही रूप है?
1: अहंकार का जो रूप है, जो हमने कहा कि सिर्फ आए नहीं लेकिन वी के बारे में हम सोचे, सो कभी कभी हमें हमारे आइडिया, हमारा तरीका, हमारा उसके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, और जब वैसा होता है तो हमें सुपीरियर फील होता है।
0: जी,
1: जो आप ऑब्सेशन की फील करें, मुझे सुपीरियर फील होता है। जब मुझे फील होता है कि मैं सुपीरियर हूँ, तो मुझे खुशी फील होती है।
0: हाँ बिल्कुल, हर इंसान को होता है।
1: हाँ, ये ईगो है। जो हम ईगो की बात करते हैं ना, वो इतनी सी चीज की भी हो सकती है, मेरा आइडिया, मेरी राय, मेरा तरीका, मेरा काम करने का तरीका, मेरा टीम को मैनेज करने का तरीका, मेरा भाषण करने का तरीका, वही राइट है और वही सुपीरियर है, एंड दैट्स व्हेन आई फील वैल्यूड। लेकिन जब हम वी में जाते हैं, तो वी में देयर इजंट अबाउट सुपीरियर एंड इनफीरियर,
0: इट्स अबाउट इंक्लूसिविटी,
1: इक्वालिटी। इसीलिए कभी कभी जब हम टीम्स में भी बैठते हैं, तो ये आपने कई बार देखा होगा, जब आप टीम्स में बैठते हैं और कई सारे मुद्दों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, तो कई बार बहुत क्योटिक हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, कुछ निकलता नहीं है। एक चीज प्रैक्टिस करनी चाहिए, सब बैठे हैं, हमने ये भी देखा सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, सबके परसेप्शन अलग हैं। कोई भी राय जब हम देते हैं, जब हम आइडिया देते हैं, हमसे पूछा गया ना, तो हम मालिक बन करके दें।
0: अच्छा,
1: लेकिन फिर जब डिसीजन का टाइम आए,
0: हाँ,
1: तो बालक बन जाए।
0: अच्छा, जब राय दें तो मालिक बन के दें, ओनरशिप के साथ, और जब डिसीजन का टाइम आए तो बालक बन जाएं। क्यों ऐसा?
1: क्योंकि डिसीजन वो होना चाहिए
0: जो सबकी राय से,
1: मेजोरिटी को ठीक लगता है,
0: हाँ,
1: और जिसमें कंपनी का, घर का, सेवा का बेनिफिट समाया हुआ है। इट इज नॉट अबाउट मी, बट इट इज अबाउट द सक्सेस
0: ऑफ दैट आइडिया,
1: ऑफ व्हाटएवर, मतलब जो भी, जिस भी चीज के लिए हम बैठे हैं। ये है थोड़ा सा अपने को अनलिमिटेड लेकर के जाना, कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट मी। आखिर हम बैठे हैं तो हम किस लिए बैठे हैं? कि ये जो आइडिया है उससे इस कंपनी को बेनिफिट हो, सफल हो, ये सेवा जो हम कर रहे हैं सफल हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपसे कुछ पूछा गया, आपने आइडिया दिया, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, सेकेंड टर्म फिर मीटिंग में बैठे, उन्होंने पूछा, फिर एक्सेप्ट नहीं हुआ, थर्ड टाइम आपका मन कहना शुरू करता है,
0: ये तो मेरी बात के, मेरी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे।
1: ये ईगो है, कितना सटली आता है। आप इन्फीरियर फील करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका आइडिया एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती, आप 10 बार भी आइडिया देते, अगर वो आपको पूछ रहे हैं तो आपकी वैल्यू है ना, नहीं तो वो आपसे पूछते ही क्यों।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
2: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
3: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
5: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इन टू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 Oak Tree Road, Islin, New Jersey.
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
9: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस,

0: रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक सवाल आया है कि एग्जाम का डर है, पेरेंट्स को 95% चाहिए और परसों मेरा एग्जाम है, बैक टू बैक पेपर्स हैं, कोई छुट्टी नहीं है, सेकेंड टाइम मैं 12th का एग्जाम दे रही हूँ, इसीलिए बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ?
2: इसमें कई सारी बातें। पहले तो आप, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए पर उसमें 95 ही होना चाहिए और आउटकम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो सकते। गोल भी रियलिस्टिक सेट करना होता है, हर एक को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो आउटकम सेट करना चाहिए। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपके बैक टू बैक पेपर्स हैं तो आप इन दिनों में सिर्फ रिवाइज ही कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: आप इन दिनों में बहुत पढ़ नहीं सकते हैं। तो अगर आपने साल भर पढ़ा होगा तो ही, आप खुद ही सोचे, बैक टू बैक पेपर्स हैं तो हम कितना ही समय हमें मिलता है, उसमें रेस्ट भी चाहिए, उसमें आपको रिलैक्सेशन भी चाहिए। सो इसीलिए साल भर भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। थर्डली, फियर कमजोर मन की रचना है। अगर आपको डर लग रहा है तो आपने जो पढ़ा हुआ है वो भी आप भूल जाएंगे। इसलिए जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो वो सारे जो थॉट्स आपको आ रहे हैं, नई मार्क्स आए तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, फिर से फेल हो गए तो क्या होगा, उन थॉट्स को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। अपने को कहना है, मैंने बहुत एफर्ट किया है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मेहनत करी है, अब मुझे बहुत स्टेबल स्थिति में जाकर के एग्जाम देना है और जो आउटकम आएगा बहुत अच्छा आएगा।
1: जी,
2: बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, पहले तो पेरेंट्स को भी इस प्रकार के एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए, वो बच्चों पर प्रेशर डालते हैं। प्रेशर ऐसा होता है कि आप किसी के ऊपर 20 किलो का वजन रखो और उसको बोलो अब चलो, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये जरूर कहना चाहिए, अच्छा करो, कैपेसिटी से ज्यादा का गोल रखो, टारगेट रखो, लेकिन कैपेसिटी किसी की हो 60 की और आप गोल रखो 90 का, तो वो भी तो एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रेशर हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने साथ बात करके आप एग्जाम दे, बहुत अच्छा होगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
2: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
6: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है.
7: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू.
6: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट.
7: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम. एसडी कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए AIIMS Education हमेशा आपके साथ है.
11: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding,
12: EKG and phlebotomy,
11: medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
10: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
13: किसी

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमें ये समझना है, हम अलग और हमसे एसोसिएट चीजें अलग हैं। आइए इस बारे में समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर जरूरत नहीं होती तो वापस नहीं पूछते, तो आपकी कदर है, हम अपने आप को ही उसमें डिमिनिश कर रहे हैं।
4: क्योंकि हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, दैट आई एम समथिंग व्हेन माय आइडिया गेट्स एक्सेप्टेड और वैलिडेटेड। सो आई एम आइडेंटिफाइंग विद माय आइडिया। मैं अलग हूँ, मेरा आइडिया अलग है।
3: बहुत बढ़िया।
4: मैं अलग हूँ, मेरा काम अलग है। मैं अलग हूँ, मेरा रोल अलग है। हम हर चीज से आइडेंटिफाई कर लेते।
3: बहुत खूबसूरत।
4: आइडिया तो फिर भी बहुत सटल है। बॉडी, अभी आप देखो बॉडी आज कितना ज्यादा, आजकल बॉडी इमेज, बॉडी शेमिंग, बॉडी ट्रोलिंग, ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये भी तो एक आइडेंटिफिकेशन है कि बॉडी ऐसी होनी चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: अब वो भी कौन डिसाइड करेगा? उसके भी कोई सेट स्टैंडर्ड्स नहीं है। अब आपका कोई ओपिनियन है मेरी बॉडी के प्रति, आप कुछ भी कहते हैं, सो मेनी पीपल आर फीलिंग एंशियस, डिप्रेशन तक में भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं लगता मैं सुंदर हूँ। आप कुछ भी कह देते हैं, मैं, मुझे ये याद नहीं है कि ये मेरी बॉडी है। एक छोटा सा ही तो डिफरेंस है ना, मेरा शरीर है, मेरी गाड़ी है, इसका ध्यान रखना है। लेकिन मुझे लगता है मैं गाड़ी हूँ। जैसे हम नई गाड़ी खरीदते हैं, अब एक पर विजुलाइज करके देखें, हमने नई गाड़ी खरीदी, बाहर पार्क करके हम अंदर ऑफिस में आ गए। अब आप जब शाम को गए पार्किंग लॉट पर, तो आपने देखा कि किसी बच्चे ने खेलते खेलते कॉइन से उसको स्क्रैच कर दिया था। उस समय आपको क्या लगता है, किसको स्क्रैच किया?
3: मेरे शरीर पे उसने खरोंच दिया।
4: आपको बिल्कुल नहीं लगता कि गाड़ी को स्क्रैच किया, आपको लगता है जैसे उसने मुझे स्क्रैच कर दिया। उस मोमेंट में आप भूल गए होते हो कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम द कार, इट्स माई कार। मेरा कार है, शरीर भी छोड़ो अभी तो और मटेरियल, मेरी कार है, टेम्पररी है, कुछ भी उसको हो सकता है, लेकिन वो वहां पर है। पर दुख किसको हो रहा है?
3: मुझे।
4: बिकॉज यू आइडेंटिफाई विद दैट कार। इन दैट मोमेंट आपको बिल्कुल याद नहीं है, आई एम सेपरेट फ्रॉम समथिंग दैट आई हैव एक्वायर्ड।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
2: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
1: तो

0: देखिए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
0: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
2: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
3: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सोनिया रजोरिया है, वो पूछती हैं कि मेरा बेटा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है और वो सोचता है कि उसे सब कुछ आता है और इससे वो अपने एग्जाम्स में आराम से पास हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ और कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं सुनता। प्लीज़ मेरी मदद करिए, इस सिचुएशन से मैं कैसे डील करूं? मेरा बेटा जो है वो एग्ज़ाम में फेल हो गया है, इसके बावजूद कि मैंने उसे बोला था कि तुम पढ़ो और ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बच्चों के इस एटीट्यूड को कैसे तोड़ें?
2: अगर हम उस समय पर हैं कि वो फेल हो गया है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके घर की करंट सिचुएशन है, तो पहली चीज़ ये बिल्कुल नहीं कहना मुझे पहले से पता था, मुझे तो पता ही था, ये तो होना ही था। ये हो जाता है कई बार, क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो दिख ही रहा था ये चीज़। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भले वो ओवर कॉन्फिडेंट था, अब जब वो फेल हो गया है तो उसका उसके मन पर जरूर इम्पैक्ट होगा।
1: बिल्कुल।
2: इसलिए एज अ पेरेंट जब कोई किसी फेलियर से गुजरता है तो पहली चीज होती है उसके मन को शक्तिशाली बनाना।
1: अच्छा,
2: सिखाएंगे बाद में।
1: हाँ।
2: वो तो सिखाना ही है, लेकिन आप कमजोर मन को तो नहीं सिखा सकते ना। आप कमजोर मन को शिक्षा नहीं दे सकते। मैं अभी आपसे चलते चलते गिर जाऊं, अपनी गलती से भी गिरूं, तो भी आप पहले क्या करेंगे?
1: पहले उठाएंगे,
2: पहले ध्यान देंगे, फर्स्ट एड देंगे, फिर जरूर मुझे सिखाएंगे कि आपको देख करके चलना चाहिए, आपको ध्यान से चलना चाहिए, आपको फोन पर टाइप करते करते नहीं चलना चाहिए। शिक्षा इज ऑलवेज सेकंड। पहले आपको उस व्यक्ति को हील करना पड़ता है। सो अगेन, अगर वो फेल हो ही गया है तो वो गिल्ट में भी होगा, उदास भी होगा, थोड़ा सा जो भी उसके इमोशनल टर्मोइल होगी। एज अ पेरेंट आपका रोल है पहले उसको बाहर निकालना, उसका स्वमान बढ़ाना। हो गया जो हो गया, अभी फुल स्टॉप लगाओ, अब आगे क्या करना है। इट इज ओके, एक बार आप फेल हुए इसका मतलब आप फेलियर नहीं हो।
1: हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना।
2: पेरेंट ही लेबल कर देते हैं
1: कि तुम फेलियर हो,
2: आप फेलियर हो, मुझे तो पता ही था, ये तो दिखाई दे ही रहा था, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आप फेलियर हो। वो जो आप रंग रंगते हो ना बच्चे की एक इमेज, वो जीवन भर उसके साथ चलते हैं।
1: वो ज्यादा उसे परेशान करेगी,
2: क्योंकि लाइफ में मार्क्स आपको फर्स्ट जॉब दिलाते हैं, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो आपको लाइफ टाइम मदद करता है।
1: बहुत खूबसूरत।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स बेस्ट

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, you're officially tuned into Mirchi Mornings. अब चाहे फिलहाल तुम किसी भी जगह पर हो या फिर अपने घर के किसी भी कोने में हो, ये आवाज अलार्म से ज्यादा पावरफुल होती है. ये है Mirchi Mornings के स्टार्ट होने की आवाज. आज का रूल काफी सिंपल है. कॉफी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मूड बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. गाने लेकर आयो तुम्हारे लिए मिर्ची दार, और साथ साथ में अराउंड द वर्ल्ड की खबरें हैं, बॉलीवुड की थोड़ी गपशप है, यहाँ वहाँ की बातें हैं, अपडेट्स हैं एंड अ लॉट मोर, बिकॉज मॉर्निंग जो है बेसिकली लाइफ का लोडिंग स्क्रीन होता है. एंड Mirchi Mornings इज हियर टू मेक श्योर कि तुम बफरिंग में नहीं बल्कि भंगड़ा मोड में आज का दिन शुरू करो एकदम मिर्चीदार तरीके से. सो बकल अप बिकॉज आने वाला है बहुत कुछ. अगले कुछ घंटों के लिए तुम और मैं साथ साथ में इस दिन को बनाएंगे और ज्यादा मिर्चीदार. एंड हे, मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझे अभी के भी फॉलो करो. मेरा हैंडल नेम है मिर्च

0: राखी के
1: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स
2: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
3: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे
4: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
5: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
6: एट तनिष्क नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: भाई बहन का रिश्ता होता है priceless. तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
8: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
9: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
10: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
11: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
12: Suno, brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
13: to aaiye, fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
12: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
13: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islin.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Tera kya hoga, Kalia?
17: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
16: Ab, mirchi kha.
18: Radio Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। अब सुनने वाले हो वेदर का हाल चाल। राइट नाउ वी सिटिंग एट 67 डिग्रीज फारेनहाइट, मोस्टली क्लाउडी है लेकिन फील हो रहा है 69 डिग्रीज फारेनहाइट की तरह। मतलब कि वेदर जो है वो कह रहा है आज थोड़ा सा बढ़ चढ़कर मैं अपना जलवा बिखेरने वाला हूँ। फ्रॉम 83 डिग्रीज फारेनहाइट ऑल द वे इट्स गोना फील बिटवीन 69 to 83 डिग्रीज फारेनहाइट। कल का हाई जो था वो 84 डिग्रीज फारेनहाइट था, सो टुडेज हाई इज प्रीटी मच सिमिलर। डिफरेंस सिर्फ तुम्हारे डेली रूटीन में हो सकता है लेकिन वेदर जो है वो कंसिस्टेंट है। अब रेन की बात कर लेते हैं, लास्ट 24 आवर्स में तो 0 मिलीमीटर्स की बरसात थी लेकिन अगले 24 आवर्स में होने वाली है 5 मिलीमीटर्स की बरसात। सुबह से बरस ही रहा है, सो अगर तुम फिलहाल बाहर घूम रहे हो और अम्ब्रेला को इग्नोर करके आए हो तो आज तो तुम्हारी क्लास लग जाएगी। लेकिन अगर अभी तक बाहर नहीं निकले हो तो अम्ब्रेला को कैरी करना बिल्कुल मत भूलना एंड ऑल्सो लेयर के प्लेयर बनकर ही बाहर जाना। वेयर योर SPF 50 ++ वाला सनब्लॉक एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। And while you do all that, let me remind you, Nanak Foods presents Mirchi Karega Bandhan Pura hai, contest chal raha hai Mirchi par, jisme tum amazing gift hampers jeet sakte ho courtesy Nanak Foods, bringing sweetness to your life. Register karna bahut hi easy peasy hai, Rakhi type karna hai, RAKHI, aur apne pure naam ke saath use WhatsApp karna hai mujhe right now. Mera WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. And you can also DM me Instagram or X par, mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. Of course, this is in association with Pirani Jewelers on Oak Tree Road with festive special offers going on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit karo piranijewelers.com. Abhi ke liye, Mirchidar bangers coming up your way. Stay tuned and stay hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison. Mucho

माइंड डोंट एंग्री मी माइंड अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है कोरियोग्राफर को मैं ही सिखाता है।

0: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
1: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
2: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
1: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
3: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
5: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
8: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे. चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए. आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन. वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200. जय गुरुदेव.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है.
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
16: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.

0: for your love. कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच,
1: अर्ज किया है चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
9: लिसनर एम आई, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
10: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: SG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
2: अभी मेरे साथ हमारी अगली कंटेस्टेंट है. हेलो.
3: हेलो.
2: हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: हाय, माय नेम इज फोरम.
2: हैप्पी राखी टू यू फोरम.
3: थैंक यू प्रिसिला, टू यू एज वेल.
2: थैंक यू सो मच. सो क्या तैयारियां चल रही है राखी की?
3: जी सब बढ़िया. मेरी एक छोटी बहन है जिनके साथ हम रक्षाबंधन मनाने वाले हैं. इट्स ऑलवेज फन कि हम यूजुअली भाई बहन के लिए मनाते हैं, बट फॉर मी शी इज माई ब्रदर सिस्टर एंड माई इंस्पिरेशन.
2: What's her name?
3: Her name is Mehak.
2: Mehak, what a beautiful name. Tell me, आप कैसे मनाते हो राखी?
3: मैं usually अपने family के साथ मनाती हूँ with Mehak. हम लोग उसका favorite खाना sweets खाएंगे and you know बाहर जाएंगे.
2: क्या है Mehak का favorite मिठाई?
3: Oh, Mehak रसगुल्ला, गुलाब जामुन और मिल्क केक बहुत पसंद है.
2: So Mehak आपको राखी बांधे, आप उनको राखी बांधते हो. And have you told her what राखी means? Like राखी का क्या महत्व है?
3: She's blind and mentally challenged. So उनको इतना समझ में नहीं आता है. पर मेरे लिए तो मेरा होल वर्ल्ड है. तो हम मोस्टली रेडियो वो आपको सुनती है काफी बार. उनको हिंदी गाने बहुत पसंद है, तो बस उनका फेवरेट प्लेलिस्ट लगाते हैं हम, साथ में खाना खाएंगे और बस.
1: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट विरानी ज्वेलर्स.com.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी. ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. My name is Priscilla, and it's time for updates from around the world. सबसे पहले नेपाल में डेवेस्टेटिंग फ्लैश फ्लड्स और मडस्लाइड्स के बाद सिचुएशन हार्टब्रेकिंग हो गई है. मोर देन 160 पीपल हैव डाइड एंड एट वन पॉइंट अराउंड 300 इंडियंस वर रिपोर्टेड मिसिंग. थैंकफुली नेपालीज रेस्क्यूअर्स से अराउंड 100 मिसिंग इंडियंस एंड 25 चाइनीज नेशनल्स हैव बीन फाउंड. अथॉरिटीज आर स्टिल असेसिंग द फुल स्केल ऑफ द डिजास्टर विद मेनी पीपल स्टिल मिसिंग. सेंडिंग आवर थॉट्स टू एवरीवन अफेक्टेड. नंबर टू पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर टीनेजर्स के लिए टाइम आउट का प्लान बना है. मेटा हैज प्रपोज्ड 2 आवर डेली लिमिट फॉर टीनेज यूजर्स इन द यूएस प्लस अ नाइट मोड फॉर मिडनाइट टू 6 AM. स्कूल मोड एंड हिडन लाइक्स आर ऑल्सो बींग प्रपोज्ड. And lastly, cricket say Sri Lankan cricket has a new centurion making history. Sonal Dinusha has become only the third Sri Lankan player after Arvinda De Silva and Kumar Sangakkara to score 3 centuries in a 2-match test series. And that's your Mirchi Hour ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris and WhatsApp par number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot. This is the future, man.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vie est la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Yeah, Jadeep.
2: हाँ जी
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
2: हाँ जी
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ. तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के.
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको. काम क्यों नहीं करेंगे.
3: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा.
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है.
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की.
3: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा.
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा.
3: एक सेकंड अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा.
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी.
3: अच्छा,
2: तो खुलेगा.
3: हथौड़ा जोर से मार दो, सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो. आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम. जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही.
2: तू कहाँ पे है? तू
3: बैंक में.
2: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर. अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने.
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
3: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप.
2: अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर. तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो.
3: ठीक है मैं वापस कर रहा हूँ. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ये पटाख
4: भैया मेरे राखी के.
5: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव. सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
7: मैनू नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
8: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा.
9: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
5: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं.
10: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
11: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
12: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
13: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
12: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses aur grooms ke liye stylish sherwanis.
15: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
12: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
16: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो.
17: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग. राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार.
18: अब मिर्ची खा.
20: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: SFG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। और क्या तुमको पता है यश एंड कियारा आडवाणी की मूवी टॉक्सिक के कुछ इंटिमेट सीन्स जो हैं वो ऑनलाइन लीक हो गए डिस्पाइट द मेकर्स इशूइंग एन एंटी पायरेसी वार्निंग। अब ये जो सीन्स है ना, इनकी वजह से काफी बैकलैश जनरेट हो रहा है विद सम व्यूअर्स क्वेश्चनिंग की स्टोरी में ये सीन्स कुछ एड भी कर रहे हैं, समथिंग मीनिंगफुल या नहीं। वन फिल्म क्रिटिक इवन सजेस्टेड दैट रिलाइंग हेवली ऑन सच सीन्स कुड इंडिकेट अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द script. While reactions online have been debating just how much of this content the movie really needs. वैसे पिक्चर रिलीज हो चुकी है और काफी बढ़िया रिव्यू आ रहे हैं इन अ नेगेटिव वे। लेकिन रिमेम्बर यार, लीक्ड कंटेंट जो है उसे शेयर करना इज एब्सोल्युटली नॉट कूल। सपोर्ट द फिल्म इंडस्ट्री बाय वॉचिंग मूवीज थ्रू लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स। एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वर्थ चेकिंग आउट, तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। गेट अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस। वाओ। एंड साथ साथ में अगर तुम्हारे पास कोई पुराना गोल्ड कहीं पड़ा हुआ रखा है उसे लेकर 18 कैरेट से अबव होगा तो एक्सचेंज कराने पर 0% डिडक्शन मिलेगा तुमको एट तनिष्क, जहां पर फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स चल रहा है, ऑफ कोर्स विद कंडीशंस अप्लाइड। एंड अभी चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स, जहां पर आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स, ऑफ कोर्स विद मी। बोलो तो प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट भी कर लो इंस्टा और एक्स पे, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स राइट 9033647244। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: 732-366-6777।
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
3: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

0: लॉन्डो के दिल पटक पटक ससे जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो लोग के

0: बावला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Yeah. Heartbeat.

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
2: अगले पार्टिसिपेंट हमारे साथ में है। हाय,
3: हेलो, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, व्हाट्स योर नेम?
3: माय नेम इज नैशो।
2: हैप्पी राखी टू यू।
3: सेम टू यू।
2: तो क्या तैयारी चल रही है राखी की?
3: आई विल गो टू टेक्सास बिकॉज़ माय सिस्टर लिव्स इन टेक्सास, सो आई विल गो देयर एंड आई विल सरप्राइज हर।
2: तो ये हर साल आप करते हैं कि इस साल स्पेशल प्लान है?
3: ये स्पेशल प्लान है बिकॉज अभी तक मेरी सिस्टर यहाँ ही रहती थी न्यू जर्सी में, लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली है।
2: वाओ, व्हाट्स हर नेम?
3: ओह, माय सिस्टर नेम इज विश्वा।
2: विश्वा, हर साल बचपन से आप राखी कैसे मनाते हो?
3: बेसिकली वो मेरे घर पे आती है, राखी एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली वो मुझे राखी बांधती है और मैं इसको गिफ्ट देता हूँ। लंच और डिनर डिपेंड्स व्हाट टाइम इज हैपनिंग। तो हम लंच डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ नया करते हैं, मॉल में घूमते हैं। बट लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली है, इसलिए मैं टेक्सास जाऊंगा, फिर देखते हैं कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं।
2: बहुत सारे लोग कहते हैं लड़कियां ना बड़ा डिफिकल्ट होती हैं टू गिफ्ट एनीथिंग।
3: वो तो है, लेकिन मेरी सिस्टर थोड़ी इजी है, मैं जो देता हूँ वो ले लेती है।
1: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

0: tarde del Key Feelings.
1: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
2: हेलो हेलो सोना कितना सोना है लेट्स फाइंड आउट. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स.
3: rajjewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,600. $4,600 पर ट्राई ऑन्स पर आकर मार्केट स्टेबल हो गई. आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें. गोल्ड बार्स 1 ounce 100 grams किलो बार्स पैम सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स अवेलेबल एट rajjewels.com. गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करें और 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड में इन्वेस्ट करने के लिए 0% इंटरेस्ट जीरो डाउन पेमेंट के साथ आज राज ज्वेल्स के स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन को अवेल करें जिसमें आज ज्वेलरी गोल्ड प्राइस लॉक करके घर ले जा सकते हैं अप्रूव होने पे और 9 installments में बिना किसी हिडन फी बिना किसी इंटरेस्ट के गोल्ड ज्वेलरी आपकी गोल्ड प्राइस आज लॉक करेंगे और अगर गोल्ड प्राइस बढ़ता है तो उसका बेनिफिट आप रखेंगे. फुल पेमेंट के बाद आपका क्रेडिट कार्ड अगेन आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट परचेज के लिए. आइए rajjewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग.
2: एंड दैट वाज गोल्ड का लेटेस्ट रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
1: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: Mirchi Mornings with Priscilla, only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidba la burga.
1: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्री मॉल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्री मॉल पे डाल रखा है, तो
2: हाँ जी,
3: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
2: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
3: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
2: नहीं, कोई बात
3: नहीं। तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आई मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
2: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू
3: डू? दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: भैया मेरे राखी के।
5: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
6: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
6: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
10: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest price.

0: prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: भाई बहन का रिश्ता होता है priceless. तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
3: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
2: Desi khana,
1: desi shopping,
2: desi culture
1: aur desi entertainment.
2: Bas ek hi destination.
1: Indo-American Community Fair, September 12th aur 13th, Shri Krishna Mandir, Morganville.
4: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
2: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
5: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
2: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
6: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है.
7: एक ही होता है.
2: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
2: मिर्ची पर चल रहा है मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट, लेकिन हमारे अगले कंटेस्टेंट का नाम नहीं पता होगा तुमको, तो पता करते हैं उन्हीं से। हेलो।
3: हेलो।
2: हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: पूर्णिमा।
2: हाय पूर्णिमा, हाउ आर यू?
3: गुड।
2: ग्रेट। क्या कर रहे हो राखी की तैयारी में?
3: राखी में मैं मेरे भाई के यहाँ जाती हूँ और वहाँ उसके राखी बांधती हूँ। पहले तो मैं उसके कपाल में कंकू का चांदला लगाती हूँ, चोखा लगाती हूँ और राखी बांधती हूँ। और बाद में मैं उसके लिए स्वीट बनाकर ले जाती हूँ, वो स्वीट मैं प्रेम से खिलाती हूँ उसको।
2: तो ये सारी मिठाइयाँ आप अपने हाथों से बनाते हैं?
3: हाँ, एक दो स्वीट में हाथे से बनाती हूँ।
2: तो आपके जो भाई हैं वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं?
3: बड़े हैं।
2: और वो क्या करते हैं आपके लिए?
3: वो मेरे लिए स्वीट लाते हैं और मुझे गिफ्ट, अच्छी गिफ्ट देते हैं, गोल्ड की स्मॉल गोल्ड एयरिंग देते हैं या विटी देते हैं, ऐसा कुछ दे देते हैं।
2: बचपन की कुछ मेमोरीज है आपकी राखी की?
3: या मेरे तीन भाई हैं, हम सब राखी के टाइम पर सब राखी बांधकर हम बाहर जाते हैं और बाहर जाकर हमें सब डिनर करते हैं और खुश हो जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं खुश खुश साल में।
1: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life. In association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27 एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: राखी के
1: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव. सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स.
2: कोई भी दिन त्योहार हो उसकी शुरुआत तो मुंह मीठा करवाने से ही होती है. आपका प्यार आपका जीवन साथी तब तक नहीं बनता जब तक सामने वाले कह न दे बात पक्की हुई करो मुंह मीठा. अरे पड़ोसियों की गाड़ी भी कहा तब तक अच्छी लगती है जब तक मिठाई का डब्बा घर नहीं आ जाता. नया घर लो कराओ मुंह मीठा. नए घर में नया मेहमान आ जाए कराओ मुंह मीठा. ये मिठास खुशियों की है. ऊपर वाला देता रहेगा और हम बांटते जाएंगे. ले आपको तो भूल ही गए. इस शुभ अवसर पर आप भी कीजिए मुंह मीठा.
3: नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइव्स.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.

0: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
2: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
4: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस. आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर. ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2.
8: लिसनर है मैं. बैक टू बैक गाना सुनेगा.
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. फटाफट से पता करते हैं आज राशि में क्या लिखा है.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: इरीज यानी मेष राशि. क्रिएटिव प्लान थोड़ा सा स्लो हो सकता है, बट डोंट लेट दैट किल योर वाइब. एक गुड फ्रेंड या क्विक वर्कआउट मूड भी फ्रेश कर देगा और माइंड क्लियर भी कर देगा. लकी कलर फॉर यू इज ब्राउन. लकी नंबर इज 6. टॉरस यानी कि वृषभ राशि. पेंडिंग वर्क फिनिश करने का फुल जोश है आज. बस वर्ड्स को थोड़ा सा फिल्टर करके बोलना. कॉन्फिडेंस और मैं ही सही हूँ के बीच में एक थिन लाइन होती है. लकी कलर इज स्टील. लकी नंबर इज 14. जेमिनी यानी मिथुन राशि. आज एक्टिविटी और डिस्ट्रैक्शन दोनों हाई हैं. फोकस को प्रोटेक्ट करो, बाउंड्री सेट करो और अगर पास्ट का कोई थॉट वापस आए किसी अपने से बात कर लेना. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 3. कैंसर यानी कर्क राशि. समवन इन्फ्लुएंशियल कुड गिव योर कॉन्फिडेंस अ सीरियस बूस्ट. बस इमोशंस थोड़े से हैवी फील हो सकते हैं, सो टेक इट इजी. लकी कलर इज पर्ल व्हाइट. लकी नंबर इज 11. लियो यानी कि सिंह राशि. कॉन्फिडेंस इज लिटरली ग्लोइंग, बट डोंट रश योरसेल्फ. हिडन टेंशन या जल्दी में बोली हुई बात मूड का विलन ना बन जाए. लकी कलर इज सैफरन. लकी नंबर इज 19. वर्गो यानी कन्या राशि. आज स्पॉन्टेनियस मोड ऑन कर लो. जो दिल में है बॉटल अप मत करो. किसी क्लोज फ्रेंड से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड सडनली लाइफ फील्स अ लिटिल लाइटर. लकी कलर इज ऑलिव ग्रीन. लकी नंबर इज 8. लीब्रा यानी तुला राशि. वर्क प्रेशर या लिटिल स्ट्रेस आ सकता है, बट डोंट लेट इट टेक ओवर. वार्म्थ, सेल्फ केयर एंड सेल्फ प्लेजर्स, चाय, कंफर्ट फूड या फेवरेट सॉन्ग कैन कंप्लीटली चेंज द मूड. लकी कलर इज रोज पिंक. लकी नंबर इज 27. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि. ओपिनियंस आज हर डायरेक्शन से आ सकते हैं. सबको कन्विंस करना जरूरी नहीं है. क्लोज फैमिली, लव्ड वंस या किड्स के साथ

सिंपल टाइम स्पेंड करो, वही रियल थेरेपी हो सकती है. लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 5, सजिटेरियस यानी धनु राशि. पीपल मे सडनली गेट वेरी क्यूरियस अबाउट योर पर्सनल प्लान्स. तुमको हर सवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की जरूरत नहीं है. टेक सम फिजिकल रेस्ट एंड गिव दोज टायर्ड मसल्स सम लव. लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 16. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, यू आर थरो फोकस्ड एंड गेटिंग थिंग्स डन, बट टुडे स्पेशली विद द लूनर एक्लिप्स एनर्जी कॉन्ट्रोवर्सी से थोड़ा सा रखो. आर्ग्यूमेंट्स और रिस्की सिचुएशन नॉट वर्थ द हेडेक. लकी कलर इज चारकोल, लकी नंबर इज 22. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, थिंग्स कैन फॉल ब्यूटीफुली इनटू प्लेस गिविंग यू दैट फाइनली वाली फीलिंग. ग्रेट डे टू एक्सप्लोर स्पिरिचुअल इंटरेस्ट्स और थिंक अबाउट योर फाइनेंशियल गोल्स. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 9. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी मीन राशि, लॉन्ग पेंडिंग बिजनेस नेगोशिएशंस कुड फाइनली मूव इन योर फेवर, बट विद द फुल मून इन योर साइन रिलेशन Relationships need a little softness. Sometimes winning an argument is less important than keeping the peace. Lucky color is sea green. Lucky number is 31. And that was your Rashi Zone. Main hoon Priscilla. Tumhare saath mein connect karu mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
3: Apne sapno ki uchai ko chune ke liye AIIMS Education hamesha aapke saath hai.
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
3: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इन टू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची का।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: अच्छा जी, अब मिर्ची मॉर्निंग्स का रैपअप का टाइम तो आ ही गया है. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी दिस मॉर्निंग. तुमने चाय पी ली, कॉफी पी ली, ब्रेकफास्ट कर लिया, कम्यूट कर लिया, ट्रैफिक को भी झेल लिया है और साथ साथ में अपने मॉर्निंग ब्लूज को भी कॉन्कर कर लिया है. जाते जाते याद दिला दूं कि रक्षाबंधन स्पेशल कॉन्टेस्ट चल रहा है. मिर्ची करेगा बंधन पूरा, ब्रॉट टू यू बाय नानक फूड्स. दैट्स व्हाई दे आर गिविंग अवे अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स टू द विनर. और अगर तुम्हें जीतना है तो तुम अभी के अभी आ रही चाय राखी टाइप करो, अपने पूरे नाम के साथ भेजो व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची इज माय नंबर 9033647244. याद रखो तो मुझे डीएम भी कर सकते हो इजी पीजी तरीके से. फटाफट से इंस्टाग्राम खोलो, मेरा हैंडल ढूंढो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो क्योंकि अब कम दिन बचे हैं राखी में और बहुत सारे लोग ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं. इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ विनर, फटाफट से अभी इस कॉन्टेस्ट में रजिस्टर करो इन association with Virani Jewelers on Oak Tree Road with festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit karo viranijewelers.com for more details. Aur abhi chhod kar ja rahi hu tumhare liye mirchidar bangers. Tata bye bye from me. Milungi tumhe kal same time same place par. Stay tuned and stay hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Jadip.
1: Hanji.
2: Ye, भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
1: हाँ जी.
2: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
1: मतलब
2: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
1: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
2: मैं यही कह रहा हूँ. तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के.
1: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको. काम क्यों नहीं करेंगे?
2: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा.
1: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
2: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
1: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की.
2: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा.
1: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा.
2: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा.
1: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी.
2: अच्छा,
1: तो खुलेगा.
2: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो. आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम. जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही.
1: तो कहाँ पे है तू?
2: बैंक में.
1: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
2: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर. अपना हथौड़ा ना चलने पर आप लोग सारा ने.
1: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
2: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
1: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर. तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो.
2: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ. ठीक. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: भैया मेरे राखी के.
4: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव. सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स.
5: क्या बनाए आज? शाही पनीर बनाए, कढ़ाई पनीर बनाए, मटर पनीर बनाए या फ्राई पनीर बनाए? अगर आपके पास नानक पनीर है तो आप कुछ भी बना सकते हैं. आंखों में चमक और चेहरे पे नूर सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं आता, उसके लिए अच्छा खाना भी खाना पड़ता है. खाना भी वो जो क्वालिटी और टेस्ट में हो नंबर वन, जैसे आप सबकी पसंद नानक पनीर. सो गुड सो प्योर, इट्स नानक.
6: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
2: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
3: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
2: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
3: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
7: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: भैया मेरे राखी के
3: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: Pepe Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virba la burga. Milci, burga. Hello.
2: Hello. Anshika? ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
1: हाँ जी,
2: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
1: जी बताइए,
3: नाम क्या है?
2: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
1: नहीं, कोई बात नहीं।
2: तो मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आए, मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
1: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू डू?
2: I am entrepreneur. दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची।

0: गॉड ब्लेस यू, आप ऐसी हंसी रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
2: भैया मेरे राखी के।
3: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
4: कोई भी दिन त्योहार हो, उसकी शुरुआत तो मुंह मीठा करवाने से ही होती है। आपका प्यार आपका जीवन साथी तब तक नहीं बनता जब तक सामने वाले कह ना दे, बात पक्की हुई, करो मुंह मीठा। अरे पड़ोसियों की गाड़ी भी कहां तब तक अच्छी लगती है जब तक मिठाई का डब्बा घर नहीं आ जाता। नया घर लो, कराओ मुंह मीठा। नए घर में नया मेहमान आ जाए, कराओ मुंह मीठा। ये मिठास खुशियों की है, ऊपर वाला देता रहेगा और हम बांटते जाएंगे। ले, आपको तो भूल ही गए। इस शुभ अवसर पर आप भी कीजिए मुंह मीठा।
5: नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइव्स।
6: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा 14 सितंबर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
9: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक। They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.

बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: मुंगरो
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
3: Grand finale at Entrepreneurs Expo Addison. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj.
4: Se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
3: दीवाना.
4: एक दीवाना शहर में.
3: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी.

रूना लैला की आवाज़ है, गुलदार साहब के लिरिक्स हैं पुरानी जीन्स पे, आप हो श्रेया के साथ, हेलो हेलो वेलकम, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, ये जो गाना अभी आपने सुना ना, ये गाना है फ्रॉम द फिल्म घरौंदा। ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1977 और ये साल एक सुपर डुपर हिट साल था। अगर हम फिल्म्स की बात करें, ये वो साल था जब मल्टी स्टारर फिल्म्स रिलीज हो रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बिग बैनर्स की रिलीज हो रही थी, फिर चाहे अमर अकबर एंथनी हो, परवरिश हो, हम किसी से कम नहीं हो। और ऐसे में अ वेरी लो बजट फिल्म विद अमोल पालेकर एंड यू नो जरीना वहाब, ये फिल्म ने भी अपनी जगह बना ली। इसी फिल्म का गाना आपके लिए लेकर के आई थी मैं। अब अगला कौन सा गाना है ये मैं बताऊंगी नहीं, सुना दूंगी। सुन करके वापस आओ, कहानी और किस्से उस जमाने के अभी तो शुरू हैं, आगे आगे सुनो होता है क्या।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: ये कमलेश जी।
3: हाँ जी कौन?
4: कमलेश जी गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने लाजवंती ने वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
3: कौन सा पैसा चाहिए तुम्हें?
4: नहीं देखिए एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब उसकी बाहर की दीवार देखो उसमें पुताई होनी है।
3: देखिए
4: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
3: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए होते तो करो आप जो कर रहे हैं।
4: भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
3: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे। कोई कहानी है कोई फसल है तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
4: आप नहीं दे रहे फिर?
3: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे
4: ना दे रहे लाजवंती ना मान रहे।
5: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for. Because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
3: yes,
5: with us?
3: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
5: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
3: No, not an issue. 750 only?
5: Yes, sir, absolutely.
4: Nah, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge.

0: हमारी बात समझ में ना आ रही, लाजवंती की एकदम गिरेज में पड़ गई।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
2: भैया मेरे राखी के।
3: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
8: फूड
9: यस,
8: शॉपिंग
9: यस,
8: एंटरटेनमेंट
9: डबल यस,
8: और हेल्थ फेयर
9: ऑफ कोर्स, सब कुछ एक ही जगह। इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्ण मंदिर मॉर्गनविल।
10: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
11: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
12: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
13: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
15: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जहरीला इंसान मूवी से ये गाना विच इज पिक्चराइज्ड ऑन ऋषि कपूर, इट इज संग बाय किशोर दा। सुनाने वाली कौन है आपको पुरानी जींस पे? करेक्ट, आपकी प्यारी श्रेया। अच्छा सुनो ना, ये गाने के लिए ऋषि कपूर अड़ गए थे आरडी बर्मन के साथ, जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है। वो चाहते थे कि ये गाना उनके लिए शैलेंद्र जी प्लेबैक करें। ऋषि कपूर को लग रहा था कि शायद किशोरदा की आवाज ना उनके लिप सिंक के साथ जाएगी नहीं, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की भाई पंचम दास से कि प्लीज इसमें शैलेंद्र जी को ले लीजिए। लेकिन भाई आरडी बर्मन तो वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। सो किशोरदा को लाया गया और क्या खूबसूरत रेंडिशन है ऑफ दिस प्रिटी प्रिटी ट्रैक ओ हंसिनी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। और कौन कौन से गाने हैं? अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, आगे आगे सुनते जाओ, होगा क्या।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
5: भैया मेरे राखी के
4: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स
6: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस तो राखी की कोई कीमत क्यों हो
7: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर
8: Did you see my new couch? We picked it up from Encanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
9: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
10: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
9: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
11: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
14: अब मिर्ची खा
16: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
17: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स

अगला जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, वो उस फिल्म का है जिसने रातों रात डेब्यू एक्टर्स को स्टार बना दिया था। एक थे कुमार गौरव और दूसरी थी विजेता पंडित। वेल, अगर आप रेट्रो फैन हैं तो आपको समझ में ही आ गया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म लव स्टोरी। लेकिन इस फिल्म ने एक्चुअली में दो दोस्तों के बीच में हमेशा के लिए दरार डाल दी, मनोज कुमार और राजेंद्र कुमार। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो राजेंद्र कुमार चाहते थे कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर जब ये फिल्म लव स्टोरी बना रहे हैं और अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसे में ही वांटेड कि मनोज कुमार शुड डायरेक्ट द फिल्म। मनोज कुमार ने मना कर दिया। मनोज कुमार ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर चुके थे और उसके तहत अपनी फिल्म क्रांति, पहली फिल्म क्रांति बना रहे थे। सो ही पोलाइटली रिफ्यूज। लेकिन ये बात राजेंद्र कुमार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राजेंद्र कुमार थॉट कि उन्होंने मनोज कुमार को उनकी पहली फिल्म दिखलाई थी, दैट वाज हरियाली, तो शायद दोस्त जो है वो इस बार फेवर रिटर्न करेगा, बट दैट डिड नॉट हैपन। एनीवे, इस फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत है। कमिंग अप, आशा ताई का ये गाना फ्रॉम द फिल्म लव स्टोरी, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
4: Pyari brides, kya dhoond rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
5: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
4: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islip.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
9: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कि ये फिल्म देवानंद साहब ने जीना तवान के लिए बनाई थी। ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड ये जो फिल्म थी ना हीरा पन्ना, इसपे देव साहब और जीना तवान थे। अब क्यों ये फिल्म उन्होंने उनके लिए बनाई थी, ऐसा वाई पीपल से इज बिकॉज ये जो फिल्म थी उससे पहले आई थी हरे राम हरे कृष्णा, और उस फिल्म में देव साहब ने जीना तमन को लॉन्च किया था। जीना तमन उस फिल्म में देव साहब की सिस्टर बनी थी। ये फिल्म हिट होने के बाद ना इतने सारे ऑफर्स आ रहे थे जीना तमन के, लेकिन सब बहन वाले। अब भाई जीना तमन तो ऑफकोर्स हीरोइन बनने आई थी, तो देव साहब ने उनको इन सारे ऑफर्स को ठुकराने के लिए मना किया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक और ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें तुम हीरोइन होगी, लीड हीरोइन की तरह काम करोगी। एंड देन दिस फिल्म केम हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ऐसे किस्से कहानियां यहाँ चलती रहेंगी, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हीरो की हीरोइन भी बन चुकी हैं और हीरो की माँ भी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म शक्ति। राखी जी को सबने बेहद मना किया था कि ये फिल्म बिल्कुल मत करो, लेकिन राखी जी मानी नहीं। वेल, शक्ति में थी स्मिता पाटिल, बच्चन साहब, दिलीप कुमार एंड राखी जी। राखी जी जो बच्चन साहब के ऑलरेडी लव इंटरेस्ट बन चुकी थी इन द फिल्म कभी कभी एंड क्वाइट फ्यू फिल्म्स, वो ये फिल्म में बच्चन साहब की माँ बनने वाली थी। लोगों ने मना किया कि भाई मत करो ये फिल्म, लेकिन राखी जी को पता क्या इंटरेस्ट किया? दिलीप साहब की वाइफ बनना इन दिस फिल्म। सो शी सेड कि मैंने दिलीप साहब के साथ काम नहीं किया, इस बहाने मैं दिलीप साहब की बीवी का रोल तो कर लूंगी। तो उन्होंने ये फिल्म शक्ति करी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म का गाना लेकर के आई थी मैं। मेरा नाम है श्रेया, फेसबुक और इंस्टा पे RJ श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल। तो बस गाने सुन करके वापस आओ, मैं यहीं वेट कर रही हूँ।

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: मेरे साथ में हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं, 14 ईयर ओल्ड। लेट्स टॉक टू हिम। हाय वत्स।
2: हाय।
1: सो टेल मी, व्हाट डू यू लव अबाउट राखी?
2: द वन थिंग आई लव अबाउट राखी इज दैट द होल डे आई गेट टू लाइक स्पेंड टाइम विद माय सिस्टर एंड लाइक एक्चुअली लाइक टॉक, cuz like she's on to like college, right? So she's always away. I have like fun time with her, and then the part when like gives me the laddu to eat, I'm like,
1: oh,
2: puts it into my mouth, the whole thing.
1: So what I understood is that you are in school and she's gone to college, she stays away.
2: Yeah.
1: Oh, so for Rakhi she comes back home.
2: Yeah.
1: Wow, so that actually is very special. Every Rakhi she comes back home. And what is your best Rakhi memory? Can you share it with us?
2: My best Rakhi memory would be probably when I was like 5, because like I used to watch this show Motu Patlu a lot. She got me this like Motu Patlu Rakhi team, like this Rakhi team, right? I was like so surprised because like I loved that show when I was like that age.
1: So do you and your sister relate to any of the characters, like you are the Motu or she is the Patlu, something like that?
2: Yeah, exactly.
0: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life. In association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
3: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Burga, burga. Navid bala burga. Mirchi burga.
4: Hello.
5: Hello.
4: Hello.
5: जयदीप।
4: हाँ जी।
5: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना, ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
4: हाँ जी।
5: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो?
4: मतलब
5: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं,
4: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए हाँ,
5: तो नहीं है आपको? मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के,
4: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेंगे?
5: क्या यूज करूं, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
4: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
5: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
4: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की।
5: काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
4: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
5: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली, ठीक है? ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा।
4: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना, तभी तो खुलेगा।
5: हथौड़ा जोर से मार दो, सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी। अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा, काम कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही।
4: तो कहाँ पे है तू?
5: बैंक में।
4: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
5: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर, अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने।
4: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
5: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
4: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर, तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो,
5: ठीक है? मैं मेरे पास कर रहा हूँ, ठीक है? मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: भैया मेरे राखी के।
7: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
8: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
9: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
12: सिमरन तू कार चढ़ के किधर जा सक रही है था? आई नो सिमरन, मेरी गलती है, मैं तेनू टाइम नहीं दे सकया।
13: नहीं राज, अपने विच पहला वर्गा हुण कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। तू बदल गया, तेरे ड्रीम बदल गए, तेरे प्रेफरेंसेस बदल गए। कुछ है जो इन सालों विच नहीं बदलिया? है कुछ?
12: नानक रसमलाई। हाँ सिमरन, हाँ नानक रसमलाई का टेस्ट आज भी वही है जो साडे व्याह तो पहला सी।
13: राज
12: सिमरन
14: नानक, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ। At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
15: अब मिर्ची खा.
17: Radio Mirchi, it's hot.
18: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स.

नीतू जी अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार काम कर रही थी इस फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ ये जो गाना है फ्रॉम द फिल्म याराना, जिसमें नीतू सिंह अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट पहली बार काम कर रही थी, तो शी वॉज इतना इन ओ ऑफ हिम कि उनके मुंह से ना डायलॉग्स ही नहीं निकल रहे थे। तो जब सेट पे उनको पहली बार जब डायलॉग बोलना था ना, वो था देखो किशन कोई आ गया। नीतू जी इतनी ज़्यादा अमिताभ बच्चन से इम्प्रेस थी कि उन्होंने कपकपाते शब्दों में कहा, देखो देखो अमित कोई आ गया। अब भाई नाम उनका किशन था, यानी बच्चन साहब का कैरेक्टर नेम, लेकिन अमित कहा उन्होंने। और काफी टाइम के बाद किशन किशन किशन किशन प्रैक्टिस करने के बाद ना, तब जा करके वो अमित को साइड रख पाई थी। पुरानी जीन्स पे उस जमाने की बात है, मेरे यानी श्रेया के साथ होती रहेंगी। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कभी न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर,
2: कभी बाथरूम की चार दीवारों की

0: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं. द स्टेज इज सेट,
1: द माइक इज रेडी. आर यू Indian American Women Entrepreneurs Association presents Mirchi Hot Mic. Abhi register kare. WhatsApp par likhiye Hot Mic aur bhejiye 9033647244 par. Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
2: Apne ghar mein to har koi sher hota hai. लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
0: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155.
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
5: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी.
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
11: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
14: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी, गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
15: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर.

नीरज साहब ने इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ज्यादा गाने नहीं लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं उनमें से ये वाला अव्वल है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, रफी साहब का था ये गाना एंड लिखने वाले थे नीरज जी। कहते हैं पोएट नीरज कह लो आप, या फिर यू नो लिरिसिस्ट नीरज कह लो, कवि नीरज कह लो, भाई

बातों के शब्दों के तो वो हमेशा धनी थे। एंड दे ऑलवेज से कि नीरज जी को ना अपने होम टाउन में एक लड़की से प्यार हो गया था, पर वो प्यार उनको कभी नसीब नहीं हुआ, और उस प्यार के लिए वो हर साल खत लिखा करते थे और उसे पोस्ट नहीं करते थे कभी। तो ये जो गाना है ना, लिखे जो खत तुझे, ये एक्चुअली में उनका एक खत था। एंड इस खत को पढ़ लिया था रफ़ी साहब ने, और उन्होंने कहा अरे इसको गाने में बनाओ ना, मैं इसे गाऊंगा। पुरानी जीन्स पे आप खुश रहे के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
5: Jai Gurudev, अवसर आवीने उभो छा आंगणे। चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मां जोडायो, जेमा 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: अभी मेरे साथ में कौन है लाइन पर, लेट्स फाइंड आउट। हेलो,
2: हाय, माय नेम इज संध्या, हाउ आर यू प्रिसिला?
1: हाय संध्या, आई एम गुड, हैप्पी राखी टू यू संध्या।
2: हैप्पी राखी टू यू टू। माय ब्रदर इज नॉट हियर, बट ही वाज हियर अ मंथ बिफोर एंड वी हैड अ गुड टाइम, दैट आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट। या बट फॉर माय मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड इज

काम नहीं करना चाहती थी. दी ओनली हीरोइन हु अग्रीड टू वर्क विद बच्चन साहब इन दिस फिल्म वॉज अरुणा ईरानी जी. इस फिल्म को देखने के बाद सलीम जावेद साहब ने जब लिखी थी जंजीर, उन्होंने कहा कि उनको उनका लंबा घोड़ा मिल गया है. प्यार से बच्चन साहब को लंबा घोड़ा कहते थे दोनों. वेल, जंजीर के लिए बहुत सारे नाम सामने आए, लेकिन द स्क्रिप्ट राइटर्स यानी द एंग्री यंग मेन सलीम एंड जावेद जी ने डिसाइड कर लिया था कि अगर कोई ये फिल्म करेगा, अगर उनका कोई विजय होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चन साहब होंगे. एंड रेस्ट इज हिस्ट्री कि जंजीर के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हिम. पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया. कम राइट बैक.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRB Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
2: It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

रणधीर कपूर जी ने प्रॉमिस किया था सुभाष घई से कि वो कान पकड़ के ऋषि कपूर को ले आएंगे ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना करेक्ट इज फ्रॉम द फिल्म कर्ज। आप ये फिल्म करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे ऋषि कपूर साहब। सुभाष घई ने उस टाइम पे इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम नहीं बनाया था, वो यू नो इनिशियल स्टेज पे थे, बट वो ये री इनकारनेशन पे, पुनर्जन्म पे फिल्म बनाना चाहते थे। इस सब्जेक्ट ने ऋषि कपूर को इतना इंटरेस्ट नहीं किया था, लेकिन रणधीर कपूर को किया था। एंड सुभाष घई चाहते थे कि उनके पास अवेलेबल तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, बच्चन साहब, धर्मेंद्र जी, काका, बट ही वांटेड अ यंगर हीरो टू प्ले द रोल ऑफ मोंटी, और इसलिए ऋषि कपूर को कान पकड़ के रणधीर कपूर ले आए, और फिर तो मूवी वॉज सुपर डुपर हिट। इसी फिल्म का गाना आपको सुनाया श्रेया ने, कम राइट बैक।

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: हमारे साथ हमारी अगली कॉलर है लाइन पर। हेलो,
2: हाय,
1: व्हाट्स योर नेम?
2: शीतल।
1: हाय शीतल, हाउ आर यू?
2: गुड
1: शीतल, हैप्पी राखी टू यू।
2: सेम टू यू।
1: क्या चल रहा है, राखी की तैयारी कैसे चल रही है?
2: बहुत अच्छे से चल रही है। राखी के दिन हम सभी भाई और सिस्टर जाने वाले है मेरे भैया के घर, फ्राइडे को ही। इस बार हम फ्राइडे को ही जाने वाले है क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे है। तो
1: ग्रेट, कौन कौन होने वाला है, उनके नाम बताइए, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो आप?
2: मेरा भाई अभी स्टोर पे है, मैं उसको बोलना चाहती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन। सो बड़ी दीदी है वर्षा दीदी, छोटी दीदी है नैना दीदी, बहन का दो बेटी है वो अमी कृष्णा, और उसके हस्बैंड और उसके भी दो बच्चे है वो भी आने वाले है। दूसरी सिस्टर है उसके भी तीन बच्चे है, तो दो ब्रदर है और बेटे है और एक बेटी है। हर साल हम लोग राखी की थाली को सजाते हैं और भाई की आरती करते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और फिर अच्छा सा खाना हम लोग मेरी मम्मी लोग बनाते हैं, फिर सभी लोग एंजॉय करते हैं। और लेकिन मेरा भाई छोटा था है वो तो बहुत नटखट है।
0: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: हेलो
1: हेलो अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
0: हाँ जी हाँ
1: मैं
0: जी
1: सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
0: जी बताइए, इसका नाम क्या है? संतोष।
1: संतोष संतोष संतोष। क्या चल रहा है
0: आप
1: अभी?
0: क्या
1: आपको
0: करते हैं?
1: डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
0: नहीं, कोई बात नहीं, आप
1: तो अभी ना
0: बताइए।
1: मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आए मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
0: संतोष क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू?
1: आई एम एंथ्रन एंथ्रपोर नहीं आई एम एन आई एम एंथ्रोनम पोनर नहीं आई एम एम्पोटोनर नहीं आई एम एम्प्र एम्प्रुतन एं एम्प एंथ्रोपोन एंथ दुकान है मैडम, कपड़े की अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो।

0: गॉड ब्लेस यू, आप ऐसी हंसी रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: भैया मेरे राखी के।
3: दिस रक्षा बंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षा बंधन विद राज ज्वेल्स।
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
5: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
6: I am not going to bed with you ever again.
5: But why? What did I do?
6: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
5: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
6: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
5: Yes, yes. Yes, come soon. Honey!
6: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
7: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
11: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सलीम और जावेद की जोड़ी टूटने के बाद ये पहली फिल्म थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जगाना आपने सुना इस फ्रॉम द फिल्म बेताब, यानी धर्म पाजी के बेटे सनी देओल की डेब्यू फिल्म। और धर्म पाजी वाज द वन जिन्होंने

अपने दोस्त जावेद अख्तर को ब्रेक दिया जब इन दोनों की सलीम और जावेद की जोड़ी टूट गई. सो दिस बिकेम द फर्स्ट फिल्म जो जावेद अख्तर साहब ने एज एन इंडिपेंडेंट राइटर लिखी थी. वेल, पुरानी जीन्स पे मेरा नाम है श्रेया और इसी फिल्म बेताब का गाना आपके लिए था. अब भाई जल्दी से वापस आओ क्योंकि अगली फिल्म के बारे में भी तो बताना है. सो कम राइट बैक.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
3: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Sri Krishna Mandir, Morganville.
2: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
4: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
5: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
5: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड।

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए AIIMS Education हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding,
4: EKG and phlebotomy,
3: medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
5: Batting to kaafi saare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
6: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
5: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
7: Isse apni jeb mein rakh le, Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है.
8: एक ही होता है.
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
9: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
10: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ, और अगला जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी फिल्म का है जो थ्रिलर फिल्म थी, लेकिन इट वॉज नोन मोर फॉर इट्स म्यूजिक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस फिल्म के लिए अपना फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट रफी साहब ने गाया है ये गाना। बताओ बताओ कौन सी फिल्म का है? करेक्ट, मूवी का नाम कर्ज, जिसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बैक्ट फिल्म फेयर अवार्ड। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
6: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार,

0: मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: अभी मेरे साथ हमारी अगली कंटेस्टेंट है। हेलो।
5: हेलो।
4: हाय, व्हाट्स योर नेम?
5: हाय, माय नेम इज फोरम।
4: हैप्पी राखी टू यू फोरम।
5: थैंक यू प्रिसिला, टू यू एज वेल।
4: थैंक यू सो मच। सो क्या तैयारियां चल रही है राखी की?
5: जी सब बढ़िया। मेरी एक छोटी बहन है जिनके साथ हम रक्षाबंधन मनाने वाले हैं। इट्स ऑलवेज फन कि हम यूजुअली भाई बहन के लिए मनाते हैं, बट फॉर मी शी इज माई ब्रदर सिस्टर एंड माई इंस्पिरेशन।
4: What's her name?
5: Her name is Mehak.
4: Mehak, what a beautiful name. Tell me, आप कैसे मनाते हो राखी?
5: मैं usually अपने family के साथ मनाती हूँ with Mehak. हम लोग उसका favorite खाना sweets खाएंगे and you know बाहर जाएंगे.
4: क्या है Mehak का favorite मिठाई?
5: Oh, Mehak रसगुल्ला, गुलाब जामुन और मिल्क केक बहुत पसंद है.
4: So Mehak आपको राखी बांधे, आप उनको राखी बांधते हो, and have you told her what राखी means? Like राखी का क्या महत्व है?
5: She's blind and mentally challenged, so उनको इतना समझ में नहीं आता है, पर मेरे लिए तो मेरा होल वर्ल्ड है. तो हम मोस्टली रेडियो, वो आपको सुनती है काफी बार. उनको हिंदी गाने बहुत पसंद है, तो बस उनका फेवरेट प्लेलिस्ट लगाते हैं हम, साथ में खाना खाएंगे और बस.
3: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट विरानी ज्वेलर्स.com.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम.
3: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
4: अगले पार्टिसिपेंट हमारे साथ में है. हाय.
5: हेलो, हाउ आर यू?
4: आई एम गुड. व्हाट्स योर नेम?
5: माय नेम इज नैशो.
4: हैप्पी राखी टू यू.
5: सेम टू यू.
4: तो क्या तैयारी चल रही है राखी की?
5: आई विल गो टू टेक्सास बिकॉज़ माय सिस्टर लिव्स इन टेक्सास, सो आई विल गो देयर एंड आई विल सरप्राइज हर.
4: तो ये हर साल आप करते हैं कि इस साल स्पेशल प्लान है?
5: ये स्पेशल प्लान है बिकॉज अभी तक मेरी सिस्टर यहाँ ही रहती थी न्यू जर्सी में, लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली है.
4: वाओ, व्हाट्स हर नेम?
5: ओह, माय सिस्टर नेम इज विश्वा.
4: विश्वा, हर साल बचपन से आप राखी कैसे मनाते हो?
5: बेसिकली वो मेरे घर पे आती है, राखी एक्सचेंज करते हैं. बेसिकली वो मुझे राखी बांधती है और मैं इसको गिफ्ट देता हूँ. लंच और डिनर डिपेंड्स व्हाट टाइम इज हैपनिंग. हम लंच करने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ नया करते हैं, मॉल में घूमते हैं. बट लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली है, इसलिए मैं टेक्सास जाऊंगा. फिर देखते हैं कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं.
4: बहुत सारे लोग कहते हैं लड़कियां ना बड़ा डिफिकल्ट होती हैं टू गिफ्ट एनीथिंग.
5: वो तो है, लेकिन मेरी सिस्टर थोड़ी इजी है. मैं जो देता हूँ वो ले लेती है.
3: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट विरानी ज्वेलर्स.com.

थर्सडे आ गया है दोस्तों, और इसका मतलब है वीक ऑफिशियली ऑन ट्रैक है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज का दिन परफेक्ट है थिंग्स इन मोशन के लिए। प्लेलिस्ट लाउडर होने वाली है, मैसेजेस थोड़े फास्टर आने वाले हैं, और प्लान्स का टोन सडनली अपग्रेड होने वाला है, क्योंकि यार थर्सडे वो स्वीट स्पॉट है जहाँ प्रेशर कम लगता है और एक्साइटमेंट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। फ्राइडे का ट्रेलर, वीकेंड का स्नीक पीक। तो यार ऑफिस हो या होम, आज एनर्जी का ग्राफ थोड़ा ऊपर ही रहने वाला है और हम भी उसी फ्लो में आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि शाम शानदार का थर्सडे एडिशन फुल ऑन पेस पे चलने वाला है। तो आप भी मुझे बताइए कि आप आज किसके लिए रेडी हो, म्यूजिक मस्ती या दोनों। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI विद योर थर्सडे मूड सॉन्ग, और तब तक के लिए मेरे थर्सडे मूड का ये रहा अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskra bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Jadip.
1: Hanji.
2: Ye, भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
1: हाँ जी.
2: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
1: मतलब
2: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
1: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
2: मैं यही कह रहा हूँ. तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के.
1: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको. काम क्यों नहीं करेंगे?
2: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा.
1: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
2: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
1: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की.
2: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा.
1: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा.
2: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा. पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा.
1: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना, तभी तो खुलेगा.
2: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो. आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम. जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही.
1: तो कहाँ पे है तू?
2: बैंक में.
1: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
2: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर. अपना हथौड़ा ना चलने पर आप लोग सारा ने.
1: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
2: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
1: अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर. तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो.
2: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ. ठीक है. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: भैया मेरे राखी के.
4: दिस रक्षा बंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव. सेलिब्रेट रक्षा बंधन विद राज ज्वेल्स.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
6: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.

0: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
2: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
3: भाई बहन का रिश्ता होता है priceless. तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
4: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
5: देसी खाना,
6: देसी शॉपिंग,
5: देसी कल्चर
6: और देसी एंटरटेनमेंट,
5: बस एक ही डेस्टिनेशन,
6: इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर, सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्णा मंदिर, मॉर्गनविल.
7: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
10: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
11: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

एक ही आर्टिस्ट पहले आपको इमोशनल भी कर दे और अगले ही गाने में आपसे डांस भी करवा दे, यार ये तो सिर्फ लाइव इन कॉन्सर्ट में ही हो सकता है। शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और एमी विर की प्लेलिस्ट खोलो ना तो मूड का रिमोट उनके हाथ में चला ही जाता है। फिर चाहे किस्मत जैसा गाना हो जिसमें दिल वाले एमी मिलते हैं, या फिर वंगदा नाप हो जिसमें एनर्जी ही बदल जाती है, या फिर उनकी पंजाबी फोक वाली टेक्सचर आए तो यार गाने में एकदम देसी रंग भर जाते हैं। और इसीलिए लाइव इन कॉन्सर्ट का मजा ही अलग होता है। एक ही शाम में रोमांस भी, इमोशन भी और फुल पंजाबी सेलिब्रेशन भी। तो दोस्तों ऐसी शाम आपके लिए आ रही है शुक्रवार को यानी अगस्त 28 को विद एमी वर्क यूनिटी टूर 8:30 बजे से लेकर कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर में, कार्टरेट न्यू जर्सी में। और दोस्तों इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन, मतलब इवेंट का कैनवस ग्रैंड ही होने वाला है। तो आज ही अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम saiusainc.com या फिर sulekha.com। और अब बारी आती है मिर्ची लिसनर्स के उस स्पेशल कॉन्टेस्ट की। जी हाँ दोस्तों, कॉन्टेस्ट बड़ा आसान सा है। आपको बताना है एमी विर्क का वो कौन सा गाना है जो आप उनसे लाइव सुनना चाहोगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, तो जल्दी से एमी विर्क टाइप कीजिए और मुझे डीएम कीजिए @rjmirchisiddhi siddhi, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी जवाब दे सकते हो @9033647244। जल्दी से जवाब भेजो और हो सकता है वो गाना इस फ्राइडे आप स्क्रीन पर नहीं सामने स्टेज पर सुन रहे हो। तो चलिए थोड़ा पंजाबी तड़का हो जाए एमी विर्क का राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट बाला बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
2: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
3: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
2: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
3: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
0: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
5: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
10: Authentic, original, and better than our right.

0: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
1: गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों. मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और सुरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी. एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धी के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है. तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल. क्योंकि दीप खाओ तो जानो. तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच,
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क,
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 903-364-7244, यानी 903-3-मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
5: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
4: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
5: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
4: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti, apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
9: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क। सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब।

बॉलीवुड की कुछ हीरोइंस का लुक ना फिल्म से निकलकर सीधा फैशन मेमोरी बन जाता है। शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी माधुरी का आइकॉनिक इंडियन लुक, तो कभी दीपिका का ग्रैंड ट्रेडिशनल स्टाइल।

तो कभी करीना का एफर्टलेस ग्लैम यार, फिल्म खत्म हो जाती है लेकिन वो लुक याद रह ही जाता है, क्योंकि मेमोरेबल स्टाइल यूजुअली लाउड नहीं होता। आउटफिट, कॉन्फिडेंस और वो केयरफुली चोजन फिनिशिंग टचेस मिलकर ही उसे सिग्नेचर बना देते हैं। और रियल लाइफ में भी किसी की वेडिंग हो, पार्टी हो या स्पेशल इवनिंग, उस पर हम सबका अपना अपना एक हीरोइन मोमेंट तो बनता है। और उसी के लिए तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबाउट 18 कैरेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो मूवी स्क्रीन हो या रियल लाइफ, तनिष्क के फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स के साथ अपना सिग्नेचर मोमेंट्स आप भी क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों मुझे जरूर बताना कि बॉलीवुड की कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसका लुक आपको आज भी आइकॉनिक लगता है। टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरी फेवरेट हीरोइन का आइकॉनिक गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: मिर्ची पर चल रहा है मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट, लेकिन हमारे अगले कंटेस्टेंट का नाम नहीं पता होगा तुमको, तो पता करते हैं उन्हीं से। हेलो।
2: हेलो।
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: पूर्णिमा।
1: हाय पूर्णिमा, हाउ आर यू?
2: गुड।
1: ग्रेट। क्या कर रहे हो राखी की तैयारी में?
2: राखी में मैं मेरे भाई के यहाँ जाती हूँ और वहाँ उसके राखी बांधती हूँ। पहले तो मैं उसके कपाल में कंकू का चांदला लगाती हूँ, चोखा लगाती हूँ और राखी बांधती हूँ। और बाद में मैं उसके लिए स्वीट बनाकर ले जाती हूँ, वो स्वीट मैं प्रेम से खिलाती हूँ उसको।
1: तो ये सारी मिठाइयाँ आप अपने हाथों से बनाते हैं?
2: हाँ, एक दो स्वीट में हाथे से बनाती हूँ।
1: तो आपके जो भाई हैं वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं?
2: बड़े हैं।
1: और वो क्या करते हैं आपके लिए?
2: वो मेरे लिए स्वीट लाते हैं और मुझे गिफ्ट, अच्छी गिफ्ट देते हैं, गोल्ड की स्मॉल गोल्ड एयरिंग देते हैं या विटी देते हैं, ऐसा कुछ दे देते हैं।
1: बचपन की कुछ मेमोरीज है आपकी राखी की?
2: या मेरे तीन भाई हैं, हम सब राखी के टाइम पर सब राखी बांधकर हम बाहर जाते हैं और बाहर जाकर हमें सब डिनर करते हैं और खुश हो जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं खुश खुश साल में।
0: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी, गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
2: वी हैव आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट विद अस. Let's talk to him. Hello.
3: Hi, good morning, Pris.
2: Hi, good morning. Akash, is it?
3: Yes, this is me, Akash, here from New York. Every day, right. I listen to your morning mirchi, so it's been awesome.
2: Wow, thank you so much. So tell me, Rakhi ki kya preparation chal rahi hai?
3: Rakhi ki preparations to ye hai ki main aur my sister UK ja rahe hain, London ja rahe hain.
2: Wow.
3: Aur wahan pe main unko surprise dene wala hoon. Hmm. And wahan pe ek acche se unke sare friends ko maine bulaya hai, invite kiya hai, surprise kiya hai. Unke पुरानी जो जितने भी मेमोरीज है, वी वांट टू फिल्म इट एंड उनके सामने प्रेजेंट करेंगे. एंड उनके पुराने फ्रेंड्स को हमने बुलाया है, तो इट विल बी ग्रेट, यू नो.
2: पूरा सरप्राइज है. व्हाट डू यू थिंक हर रिएक्शन वुड बी?
3: शी विल बी लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत से कनेक्शन जो होते हैं जो डे टू डे पे नहीं मिल पाते हैं और हमारे फ्रेंड्स छूट जाते हैं, तो उनको मैं सारे यूनाइट करूंगी. तो 35-40 डेज से ये प्लानिंग चल रहा है कि सबको यू नो एक जगह पे यूनाइट करना है. एंड और उनका सब फूड से लेके सब कुछ उनका फेवरेट होने वाला है, कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग. सो दिस विल बी वन बिग सरप्राइज फॉर हर, जो मैं अपने साइड से करना चाहता हूँ.
1: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: This hour is brought to you by Raj Jewels. Sham Shandar,
1: let's do not donkey, have a funky time. एक जमाना था जब कमिंग अप नेक्स्ट का मतलब सच में वेट करना होता था। शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी और स्वागत है आपका थ्रो बैक थर्सडे में। तो चलिए थ्रो बैक टू दोज टाइम जब यार संडे का इंतजार सिर्फ एक शो के लिए होता था। उसे सोचिए आजकल तो एक क्लिक में पूरा सीजन मिल जाता है, लेकिन फ्राइडे रात का वो काउंटडाउन, क्योंकि यार फेवरेट मूवी टीवी पर आने वाली होती थी, उसका मज़ा ही अलग होता था। और अगर बीच में लाइट चली गई तो बस उस दिन का मूड ही ऑफ। और शायद इसीलिए उस वक्त एंटरटेनमेंट की वैल्यू भी अलग थी। हम देखते कम थे, इंतज़ार ज़्यादा करते थे, और शायद इंतज़ार ही उस खुशी को इतना बड़ा बना देता था। तो आज घर जाते हुए एक काम ज़रूर कीजिए, किसी पुराने टीवी शो का टाइटल सॉन्ग याद करने की कोशिश कीजिए और देखना पूरा बचपन बैकग्राउंड में प्ले होने लगेगा। और हाँ, मुझे ज़रूर बताना वो कौन सा शो है जिसके लिए आप टाइम से पहले टीवी के सामने बैठ जाते थे। DM me on Instagram RJ मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और चलिए उस जमाने की यादों को सलाम करते हुए सुनते हैं ये एवरग्रीन बॉलीवुड गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. Na vietva la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो, ये कमलेश जी?
2: हाँ जी, कौन?
3: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
2: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
3: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
2: देखिए,
3: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
2: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
3: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो।
2: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई कहानी है, कोई फसल है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
3: आप नहीं दे रहे फिर?
2: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
3: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
4: I want to talk to you. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for. Because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
2: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
4: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
2: No, not an issue. 750 only?
4: Yes, sir, absolutely.
3: Na, 750 na, bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, bada.
5: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan.

0: London with Raj Jewels.
1: Oh, दलजी तो दुकान है।
2: बड़ी पाजी,
1: आप क्या लेने आए हो?
2: शुद्ध देसी घी।
1: लो पाजी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है।
2: घी टेस्ट के लिए थोड़ा खाते हैं, घी सेहत के लिए खाते हैं। मुझे चाहिए शुद्ध देसी घी, जो घर वाला टेस्ट दे, जो ब्रांड भी हो ना वो ट्रस्टेड हो। वो एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा।
1: नानक घी पाजी,
2: नानक घी चाहिए यार। अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए। सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक।
0: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow to jano.
0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
10: शाम शादा लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और लाइफ में ना अक्सर जो चीज़ें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होती है वही कभी कभार सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी लगती है। फिर चाहे नई जॉब हो, नया सिटी या कोई बड़ा डिसीजन, यार शुरुआत में ना सब कुछ एक रोलर कोस्टर राइड जैसे ही फील होता है। और इसी एक्साइटमेंट और कन्फ्यूजन के बीच हम अक्सर वो गलतियाँ कर बैठते हैं जो शायद थोड़ी सी गाइडेंस से ना अवॉइड हो सकती थी। और घर खरीदना भी कुछ ऐसा ही माइलस्टोन है, इतना बड़ा डिसीजन कि एक्साइटमेंट तो होती ही है लेकिन सवाल भी हजार होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि इस जर्नी को थोड़ा सिंपल कैसे बना दिया जाए और सबसे कॉमन मिस्टेक से कैसे बचा जाए। मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
11: जय जय राम मिर्ची लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। इफ यू कैन स्टे होम प्लीज डू दैट, यू डोंट वांट टू बी स्टक समवेयर इन वाटर। एंड टुडे द यूएस मार्केट्स राइज and U.S. jobless claims dip again, mortgage rates remain stuck. One of the biggest misconceptions is that you need perfect credit score to buy a home. That's simply not true. Credit is important, but lenders look at the overall financial picture, including income, assets, debts, and payment history. Another myth is that you should stop spending once you are pre-approved. Actually, you need to be careful about making any major financial changes. Buying a new car, opening new credit cards, or moving large amounts of money without documentation can potentially complicate your mortgage approval. So friends, buying your dream home Pre-approval is free, advice is free. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.25%. 20-year fixed mortgage rate, 6.125%. 15-year fixed mortgage rate, 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And it is lionmtg.com. And finally, many buyers think that they should wait until they have a used down payment. Depending on the loan program and their circumstances, some buyers may qualify with considerably less. So my advice is simple. Don't make assumptions about what you can or cannot qualify for. So call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home or refinancing. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, stay safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you. Bye-bye.
9: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो

0: आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
3: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 Oak Tree Road, Islington, न्यू जर्सी।
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
12: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islington, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
16: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट RK ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

की टाइम। वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है वो मिलके ही रहता है, लेकिन कभी कभी किस्मत को भी थोड़ा सा हिंट देना पड़ता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी, और जब भी एमी विर्क का किस्मत ये गाना सुनती हूँ ना, एक पूरी कहानी आंखों के सामने आ जाती है। वो प्यार, वो इंतजार और वो थोड़ी सी कसक, और एमी विर्क की वो आवाज़ जो इमोशन को सीधा दिल तक पहुँचाती है। लेकिन इस बार

एमी विर्क की कहानी सिर्फ स्क्रीन या प्लेलिस्ट तक नहीं रुकने वाली, क्योंकि शुक्रवार अगस्त 28 को एमी विर्क अपने यूनिटी टूर के साथ न्यू जर्सी आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एट द वंडरफुल वेन्यू ऑफ कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर इन कार्टरेट न्यू जर्सी इट्स गोइंग टू बी एन अमित जेटली ऑफ सा यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन। तो इवेंट का कैनवस बहुत ही ग्रैंड रहने वाला है, तो आज ही अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम sulekha.com या फिर sayusaiNC.com। और अब बारी आती है आपकी किस्मत की, क्योंकि मिर्ची लिसनर्स के पास कॉन्सर्ट की टिकट जीतने का मौका है। तो मुझे बताइए कि अगर एमी विर्क के कॉन्सर्ट में आपकी किस्मत खुल जाए तो वो कौन सा गाना होगा जो आप सबसे पहले लाइव सुनना चाहोगे। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI टाइप कीजिए एमी विर्क और अपना जवाब और कॉन्टेस्ट में एंटर हो जाओ, क्योंकि हो सकता है अगला डीएम मेरा हो और मैं कहूँ कि बॉस किस्मत में एमी विर्क लाइव शो लिखा है। तो चलिए, अब किस्मत की बात हो ही रही है तो अगला गाना भी वही है, एमी विर्क का किस्मत। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Rakshabandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Rakshabandhan with Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow to jano.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
8: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: हमारे साथ अगली पार्टिसिपेंट आ चुकी है लाइन पर, लेट्स फाइंड आउट क्या नाम है उनका। हेलो,
2: हाय, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड एंड माय नेम इज आचल।
1: हाय आचल।
2: या एक्साइटमेंट है, राखी की तैयारी है, स्पेशल बॉन्ड होता है ब्रदर सिस्टर का, सो जस्ट वेरी एक्साइटेड। ये वीकेंड पूरा सेलिब्रेशन रहेगा 2-3 दिन।
1: सो आपके भाई का नाम क्या है?
2: मेरे भाई का नाम सुमीर है।
1: सुमीर, और वो आपके साथ में है या वो इंडिया में है?
2: वो यहीं पर हैं, लोकली हैं, सो वी गोना मीट एंड सेलिब्रेट इट टुगेदर।
1: तो कैसे आप मनाते हो हर साल?
2: बस ये एक्साइटमेंट ही रहती है, मिलते हैं साथ में, खाना खाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं साथ में, बच्चों को भी, वो लोग भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो इस त्योहार का एक स्पेशल ये होता है कि जो हम लोगों ने पास में मेमोरीज चाइल्डहुड में रखी होती है वो सब रिवाइव हो जाती है। तो ये वी जस्ट गो आउट ईट इन द इवनिंग, पहले शाम को घर में राखी का फेस्टिवल करते हैं, फिर नेक्स्ट डे मंदिर जाके भी सेलिब्रेट करते हैं उसको।
1: एंड आपको गिफ्ट मिलते होंगे बहुत अमेजिंग।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे इतना अच्छे अच्छे ज्वेलर्स हैं एडिसन में, तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं।
1: Wow.
2: Yeah.
1: That's amazing. And our contest
0: presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

दोस्तों, कभी कभी लगता है कि पहले हम गाने सुनते कम थे, उसके साथ ज्यादा रहते थे। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज अचानक कैसेट का वो जमाना याद आ गया। जी हाँ, जब फेवरेट गाना सुनने के लिए ना पूरा साइड ए पेशेंटली सुनना पड़ता था, फिर फास्ट फॉरवर्ड करना भी एक आर्ट होता था, और उस वेट का भी एक अलग ही मजा होता था। और मजे की बात तो ये है कि फेवरेट गाने का इंतजार करते करते बीच के जितने भी गाने थे ना, वो भी हमें याद हो जाते थे, क्योंकि एक कैसेट हम खरीदते थे और उसके हर ट्रैक की अलग ही अपनी पहचान बन जाती थी। और वैसे तो आज प्लेलिस्ट में हजारों गाने हैं, रील्स में 20 सेकेंड्स के क्लिप्स हैं, लेकिन तब एक कैसेट महीनों तक हमारे साथ चलती थी। कार में वही, घर में वही, वॉकमैन में वही। और शायद इसीलिए आज भी जब भी कोई पुराना गाना बजता है ना, उसके सिर्फ लिरिक्स याद नहीं आते, वो पूरा दौर याद आ जाता है। स्पेशली वो दौर जब हम कैसेट की जब रील बाहर निकलती थी तो पेंसिल से उसे ठीक करते थे। तो चलिए आज रेडियो पर भी वही पुराना एहसास वापस लाते हैं। इस गाने को बिल्कुल कैसेट के जमाने की तरह बिना स्किप किए पूरा इंजॉय कीजिए। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपने जिंदगी की पहली कैसेट कौन से एल्बम की खरीदी थी। टेल मी ऑन इंस्टेड RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मैंने जिस एल्बम की खरीदी थी उसी का गाना आपके लिए आगे बजाने वाली हूँ। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do non-donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। एल्बम था प्रीतम ने बनाया हुआ लव आजकल का, तो ये तो आपको याद होगा ही, लेकिन इसका जो ये खास गाना है जो सीधा साधा नहीं था, बिल्कुल था ट्विस्ट, पूरा मूड पार्टी मोड में स्विच कराने वाला एक गाना, जो यार लिखा तो वैसे इरशाद कामिल ने था, सिंगर थे नीरज श्रीधर और म्यूजिक था प्रीतम का। और जब भी शाम को थोड़ा ग्रूव चाहिए था ना तो हम ट्विस्ट सुनते थे, क्योंकि यार नीरज श्रीधर की एनर्जेटिक आवाज़ ही ऐसी थी कि यार अगर तुम बस बैठे हो ना तो भी थिरकने लग जाते थे, और प्रीतम का फंकी कंपोजिशन इन दोनों का बहुत ही परफेक्ट मेल था, और ये जो गाना था हर पार्टी में अपने आप को पोजीशन कर ही लेता था। वैसे मज़े की बात तो ये है कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी में सैफ अली खान ने अपने नेचुरल डांसिंग स्टाइल को फुल ऑन एक्सप्लोर किया था, जहाँ उन्होंने स्पॉन्टेनियस डांस मूव्स किए थे, मतलब वो ज़्यादा कोरियोग्राफी हुई ही नहीं थी उस मूवी में, जो फिल्म में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वैसे प्रीतम और इरशाद कामिल का कोलैबोरेशन फुल ऑन फन वाइब, ये गाना एक इंस्टेंट क्राउड पुलर बन ही गया था, और आज भी उतना ही हमें थिरकाता है, उतना ही हमें डांस करने पे मजबूर करता है। तो आप भी बताना कि आपका ट्विस्ट मोमेंट कब था, टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और क्या आज भी ये गाना सुन के आप भी अपने आप में डांस करते हो। वैसे इस एल्बम के और भी गाने के बारे में बात होने वाली है, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy. Iskabana puskabana sakabana. Yabana. Burka burka. Na virtuala burka. Energy burka.
1: Hello.
2: Hello. Anshika. ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से. मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
1: हाँ जी,
2: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए.
1: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
2: संतोष. संतोष
1: संतोष
2: संतोष. सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
1: नहीं कोई बात.
2: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही

0: लिया है।
1: संतोष क्या करता है, व्हाट डू यू डू?
0: दुकान है मैडम, कपड़े की अपनी दुकान है। Anjika, this is Naved. I'm calling from radio. God bless you. आप ऐसी हंसती रहिए, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot. This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels. Inefficient,
3: very complex,
4: clumsy, or
5: confusion ही confusion.
2: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी. डीप, खाओ तो जानो.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: क्या बनाए आज? शाही पनीर बनाए, कढ़ाई पनीर बनाए, मटर पनीर बनाए या फ्राई पनीर बनाए? अगर आपके पास नानक पनीर है तो आप कुछ भी बना सकते हैं. आंखों में चमक और चेहरे पे नूर सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं आता, उसके लिए अच्छा खाना भी खाना पड़ता है. खाना भी वो जो क्वालिटी और टेस्ट में हो नंबर वन, जैसे आप सबकी पसंद नानक पनीर. सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
13: अब मिर्ची खा.
15: रेडियो मिर्ची, it's hot.
16: Sham Shardar, let's do non-donkey, have a funky time.
17: दोस्तों, नए देश में सबसे पहला कॉन्फिडेंस कब आता है पता है? जब लगता है कि हाँ यार, हम यहाँ पर अब अपनी जगह बना सकते हैं. शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी. और जी हाँ, नई लाइफ शुरू करना एक्साइटिंग तो होता है, लेकिन थोड़ा ओवरवेलमिंग भी होता है, स्पेशली जब हर जगह एक्सपीरियंस मांगा जाए. पर इमेजिन कीजिए एक ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनना जहाँ लर्निंग के साथ क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी मिले, ताकि क्लासरूम सिर्फ थियोरी तक ही लिमिटेड ना रहे, उसी के साथ कॉन्फिडेंस भी साथ जुड़े और हेल्थ केयर में अपनी जगह बनाने का जो हमारा सपना है वो भी पूरा हो, तो कितना बढ़िया होगा. तो उसी के लिए आज ही विजिट कीजिए एम्स एजुकेशन, द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज, जो ऑफर करते हैं हेल्थ केयर प्रोग्राम्स विद रियल टाइम क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स. US इक्विवेलेंट हाई स्कूल ग्रेजुएशन के साथ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. फॉर मोर गाइडेंस कॉल

9082220002 या फिर आप विजिट कर सकते हो aimseducation.edu और हेल्थ केयर साइंस से जुड़ने का अपना सपना पूरा कर सकते हो। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची।

0: Plus, zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com. भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो.
2: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग. राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
7: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। जी हाँ, लव आज का कल का, लव आज कल कंपोज्ड बाय प्रीतम। और उस एल्बम का जो ये गाना है, ये एक ऐसा गाना था जिसने यार ब्रेकअप को भी ना मुस्कुरा कर देखना सिखा दिया था। ऑफकोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा, चोर बाजारी। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ज़्यादातर ब्रेकअप सॉन्ग्स रुला देते हैं या फिर फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, मतलब अरिजीत सिंह टाइप्स, लेकिन चोर बाजारी ये हार्ट ब्रेक को भी ना थोड़ा शरारती बना देता था। मतलब अगर आज की शाम में ट्रैफिक में फंसे एक्स की याद आ भी जाए तो ये गाना कहता है कि यार थोड़ा हंस लो उस पर, क्योंकि नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की नोकझोंक भरी वोकल्स बिल्कुल दो एक्स लवर्स की टीजिंग जैसी लगती है। और प्रीतम ने इसमें दर्द को ढोलक और बाउंस के साथ पैकेज किया। मतलब सोचिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। मज़े की बात तो ये है कि इम्तियाज अली ने इस गाने को ना स्पेसिफिकली सैड सेपरेशन जोन में नहीं रखा था, डेलिबरेटली प्लेफुल बनाया था, क्योंकि जय और मीरा का जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म होके भी मूवी में ख़त्म नहीं हुआ था, और इसीलिए गाना ब्रेकअप सॉन्ग होकर भी सेलिब्रेशन लगता है। और वो अकॉर्डियन स्ट्रीट बैंड जैसा जो फील है ना, वो यार दिल्ली की गलियों में सीधा लेके जाता है, जहाँ दिल और ईगो दोनों साथ में भाग रहे होते हैं। वैसे आप भी बताना कि हार्ट ब्रेक का कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है। क्या वो इसी तरह हल्का वाला गाना है या फिर दिल तोड़ के चीर देने वाला गाना है? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। फिलहाल करेंगे इसी एल्बम पे थोड़ी और बातें, लेकिन आपके लिए राइट हियर चोर बाजारी ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: हमारे साथ हमारी अगली कॉलर है लाइन पर। हेलो,
2: हाय,
1: व्हाट्स योर नेम?
2: शीतल।
1: हाय शीतल, हाउ आर यू?
2: गुड
1: शीतल, हैप्पी राखी टू यू।
2: सेम टू यू।
1: क्या चल रहा है, राखी की तैयारी कैसे चल रही है?
2: बहुत अच्छे से चल रही है। राखी के दिन हम सभी भाई और सिस्टर जाने वाले है मेरे भैया के घर, फ्राइडे को ही। इस बार हम फ्राइडे को ही जाने वाले है क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे है। तो
1: ग्रेट, कौन कौन होने वाला है, उनके नाम बताइए, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो आप?
2: मेरा भाई अभी स्टोर पे है, मैं उसको बोलना चाहती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन। सो बड़ी दीदी है वर्षा दीदी, छोटी दीदी है नैना दीदी, बहन का दो बेटी है वो अमी कृष्णा, और उसके हस्बैंड और उसके भी दो बच्चे है वो भी आने वाले है। दूसरी सिस्टर है, उसके भी तीन बच्चे है, तो दो ब्रदर है बेटे है और एक बेटी है। हर साल हम लोग राखी की थाली को सजाते हैं और भाई की आरती करते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और फिर अच्छा सा खाना हम लोग मेरी मम्मी लोग बनाते हैं, फिर सभी लोग एंजॉय करते हैं। और लेकिन मेरा भाई छोटा था है वो तो बहुत नटखट है।
0: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life. In association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
3: Kabhi Jersey ki street par. Kabhi choti choti parties ke beech.
4: Arz kiya hai, chandni raat thi, daud raha tha sone ka ghoda. Tabadak, tabadak.
3: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
5: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
6: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzelin।
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
10: गोली गोज डाउन द ग्राउंड, गोली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
9: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के उस सुपर डुपर हिट एल्बम की जिसका यार हर एक गाना धमाकेदार था, कंपोज्ड बाय प्रीतम। 2009 का लव आजकल का एल्बम, और वैसे तो यार इसके सारे ही गाने अमेजिंग थे, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसे सुन के ना शांत रहना इम्पॉसिबल हो जाता है, आर फेवरेट आहू आहू। क्योंकि सच बताओ तो आहू आहू वो गाना है जो सुनते ही बॉडी पहले रिएक्ट करती है और दिमाग बाद में बोलता है, फिर चाहे इवनिंग ड्राइव टाइम हो या किचन में चाय बन रही हो, इस बीट पे शोल्डर्स खुद हिलने लगते हैं। क्योंकि नीरज श्रीधर की जो प्लेफुल वोकल्स है, मास्टर सलीम का पंजाबी फायर और सुजन डी मेलो का एटीट्यूड, और ऊपर से प्रीतम के ढोल मीट्स क्लब का ग्रूव, ये गाना मतलब फुल ऑन कंट्रोल्ड मैडनेस है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये जो सॉन्ग का फोक क्लब फ्यूजन है ना, उस वक्त ही इतना ज़्यादा फ्रेश लगता था, और ना सिर्फ उस वक्त अभी भी उतना ही ग्रूविंग है। और उसके ऊपर मास्टर सलीम का जो रस्टिक पंच है, उसने इस ट्रैक को वो देसी स्वैगर दिया था जो हमें सीधा डांस फ्लोर पे लेके जाता है। वैसे ऑनेस्टली ये जो गाना है वो उन रेयर गानों में से है जो थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, थोड़ा सा टीज करता है और बहुत

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: श्याम शारदा, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम.
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका हर एक गाना ना सिर्फ सुपर डुपर हिट था बल्कि दिल को छू लेने वाला था। जी हाँ, वैसे तो इस एल्बम के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, इसके गानों के बहुत सारी बातें की है, कंपोज

बाय प्रीतम, लव आजकल का एल्बम, जिसमें यार चोर बाजारी जैसा ब्रेकअप वाला गाना भी था जिसने ब्रेकअप के बाद मुस्कुराना सिखा दिया था, और एक ऐसा गाना था जिसने बस दूरियों को महसूस कराना सिखाया था। जी हाँ, ये दूरियां बाय मोहित चौहान, क्योंकि कुछ गाने सुनते ही ना दिल में उतर जाते हैं और दूरियां उन्हीं में से एक गाना था। जब चोर बाजारी हमने सुना था तब लगा था कि इम्तियाज अली और प्रीतम ने इस एल्बम को काफ़ी ब्रॉड रेंज बनाया था कि एक हार्ट ब्रेक के गाने को भी इतने हल्के से शरारती रंग में दिखाया था, लेकिन फिर पता चला क्योंकि बाद में दूरियां आने वाला था, क्योंकि दूरियां वो एक ऐसी कहानी बताता था जब साइलेंस भी बोलने लगता है, क्योंकि मोहित चौहान की आवाज़ ही ऐसी थी, जो रॉनस उनकी आवाज़ में थी ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गाना गा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था कि दिल से कुछ बोल रहे हैं। और प्रीतम का कंपोजिशन भी देखिए, मतलब ना कोई बीट्स, बस गिटार और हवा और थोड़ी सी साइलेंस, जैसे गाने में भी ना फासला हो। और यही तो कमाल की बात है इस गाने की, ये गाना सिर्फ दूरियों की बातें नहीं करता, दूरियाँ महसूस कराता है। किसी का साथ छूटना, लॉन्ग डिस्टेंस या बस एक इमोशनल गैप, हर कोई जो इस गाने को सुनता है ना अपनी कहानी में उसे रख देता है। और मज़े की बात तो ये है कि मोहित चौहान के फ्री फ्लोइंग फ्रेजिंग और ऑलमोस्ट एक कन्वर्जेशनल टाइप सिंगिंग ने इस ट्रैक को बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट बना दिया, और शायद इसीलिए ये हार्ट ब्रेक एंथम कम पर्सनल कन्फेशन ज़्यादा लगता है। वैसे आप भी मुझे बताइए, क्या आपको ये गाना उतना ही डीप लगता है जितना मुझे लगता है? टेल मी ऑनेस्ट एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर इस गाने ने दूरियाँ फील कराई है तो किसको याद करके आज ये गाना सुन रहे हो वो भी बताना। तब तक के लिए सुनते हैं दूरियाँ फ्रॉम द अमेजिंग एल्बम लव आजकल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Yeah, Jadeep.
1: Hang on.
2: Yeah. भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना, ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
1: हाँ जी।
2: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो?
1: मतलब
2: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं,
1: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए हाँ
2: तो नहीं है आपको? मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के,
1: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेंगे?
2: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
1: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
2: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
1: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की।
2: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
1: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
2: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है अभी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च जला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा।
1: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा।
2: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खोली नहीं रही।
1: तो कहाँ पे है तू?
2: बैंक में।
1: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
2: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर
1: है?
2: अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने?
1: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
2: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
1: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर, तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो।
2: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक है,
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट पटक। नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
5: अगले पार्टिसिपेंट हमारे साथ में है। हाय,
6: हेलो, हाउ आर यू?
5: आई एम गुड, व्हाट्स योर नेम?
6: माय नेम इज नैशो।
5: हैप्पी राखी टू यू।
6: सेम टू यू।
5: तो क्या तैयारी चल रही है राखी की?
6: आई विल गो टू टेक्सास बिकॉज़ माय सिस्टर लिव्स इन टेक्सास, सो आई विल गो देयर एंड आई विल सरप्राइज हर।
5: तो ये हर साल आप करते हैं कि इस साल स्पेशल प्लान है?
6: ये स्पेशल प्लान है बिकॉज अभी तक मेरी सिस्टर यहाँ ही रहती थी न्यू जर्सी में, लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली है।
5: वाओ, व्हाट्स हर नेम?
6: ओह, माय सिस्टर नेम इज विश्वा।
5: विश्वा, हर साल बचपन से आप राखी कैसे मनाते हो?
6: बेसिकली वो मेरे घर पे आती है, राखी एक्सचेंज करते हैं, बेसिकली वो मुझे राखी बांधती है और मैं इसको गिफ्ट देता हूँ। लंच और डिनर डिपेंड्स व्हाट टाइम इज हैपनिंग, तो हम लंच के डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ नया करते हैं, मॉल में घूमते हैं। लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली है, इसलिए मैं टेक्सास जाऊंगा, फिर देखते हैं कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं।
5: बहुत सारे लोग कहते हैं लड़कियां ना बड़ा डिफिकल्ट होती हैं टू गिफ्ट एनीथिंग।
6: वो तो है, लेकिन मेरी सिस्टर थोड़ी इजी है, मैं जो देता हूँ वो ले लेती है।
4: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viraniejewelers.com।
7: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
10: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी, टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर in demand healthcare careers.
9: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospital.

0: hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu. कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
0: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
2: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
3: सिमरन तू कार छड़ के किधर जा सकती है था? आई नो सिमरन, मेरी गलती है, मैं तेरे को टाइम नहीं दे सकिया।
4: नहीं राज, अपने विच पहला वर्गा हुण कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। तू बदल गया, तेरे ड्रीम बदल गए, तेरे प्रेफरेंसेस बदल गए। कुछ है जो इन्ने सालों विच नहीं बदलिया? है कुछ?
3: हाँ।
4: की?
3: नानक रसमलाई। हाँ सिमरन, हाँ नानक रसमलाई दा टेस्ट अज भी ओही है जो साडे विआह तों पहलां सी।
4: राज
3: सिमरन
5: नानक, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Tera kya hoga Kalia?
3: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
8: Ab mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज का हंगामा आ रहा है एक ड्रीमी सॉन्ग के पीछे से। जी हाँ, पहला नशा। अब ये गाना आपने पर्दे पे तो देखा ही होगा, तो जब हम ये गाना पर्दे पे देखते हैं ना, तो यार लगता है कि एकदम स्लो मो में चल रहा हो। मतलब आमिर खान और आयशा झुलका के बीच वो ड्रीमी वॉक, एकदम फर्स्ट लव वाइब। पर पर्दे के पीछे की बात तो ये है कि उस वक्त बॉलीवुड में स्लो मो कैमरा टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो डायरेक्टर मंसूर खान ने जुगाड़ निकाला। उन्होंने कहा कि एक्टर्स को ना अब लिटरली स्लो मो में रन और मूव करना है, और बाद में कैमरा स्पीड और एडिटिंग से वो स्लोमो वाला इफेक्ट क्रिएट किया गया। मतलब रोमांस स्क्रीन पे तो बिल्कुल स्मूथ था और पर्दे के पीछे सब बस धीरे धीरे चल रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में भी ना ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। वैसे आप भी बताना कि पहला नशा सुन के आपको किसकी याद आती है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
3: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
4: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जद एक दूजे दे नाल काम ना करे।
5: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
6: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
7: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all in one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one।
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
12: ओह नो,
13: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
14: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
18: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी, गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है एक एवरग्रीन गाने के पीछे से। जी हां, गाता रहे मेरा दिल। यानी आपने जब ये गाना देखा होगा तो लगा होगा कि वाह क्या हिल्स है, क्या लोकेशन है, फुल पोस्ट कार्ड वाइब्स। देवानंद जी भी गाते हुए पहाड़ों में घूम रहे थे, एकदम केयर फ्री मोड। पर पर्दे के पीछे का सीन ना थोड़ा हटके था। देवानंद को पूरा यकीन दिलाया गया था कि ये जो शूट होने वाला है वो रोहतांग पास पे हो रहा है। रियलिटी चेक तो ये थी कि रोहतांग पास था ही नहीं, लोकेशन असल में 12 किलोमीटर दूर कहीं और ही थी। और जब देवानंद जी को पता चला तो वो बोले कि यार ये क्या था, मतलब गाना चल रहा है गाता रहे मेरा दिल और पर्दे के पीछे डायरेक्टर बोल रहे कि यार चलता है थोड़ा सा झोल, मतलब ये क्या हो रहा है। तो कुछ कभी कभी ना मतलब एक्टर्स को भी इस तरह से समझा बुझा के थोड़ा बहुत उल्लू बनाकर ऐसे लोकेशन पे लेके जाते हैं जो लोकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप समझ गए कि यार लोकेशन भी कभी कभी एक्टिंग करती है और सच इंटरवल के बाद ही रिवील होता है। तो दोस्तों ऐसे पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किस्से अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: गाता रहे मेरा दिल।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
1: मिर्ची हॉट माइक। लॉग आउट ऑफ वर्क।

0: राखी की
1: प्रेपरेशन तो ये है कि मैं और मेरी सिस्टर यूके जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, और वहाँ पे मैं उनको सरप्राइज देने वाला हूँ. एंड वहाँ पे अच्छे से उनके सारे फ्रेंड्स को मैंने बुलाया है, इन्वाइट किया है, सरप्राइज किया है. उनके पुरानी जो जितने भी मेमोरीज है वी वांट टू फिल्म इट एंड उनके सामने प्रेजेंट करेंगे. एंड उनके पुराने फ्रेंड्स को हमने बुलाया है, तो इट विल बी ग्रेट, यू नो.
0: पूरा सरप्राइज है. व्हाट डू यू थिंक हर रिएक्शन वुड बी?
1: शी विल बी लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत से कनेक्शंस जो होते हैं जो डे टू डे पे नहीं मिल पाते हैं और हमारे फ्रेंड्स छूट जाते हैं, तो उनको मैं सारे यूनाइट करूंगी. तो 30-40 डेज से ये प्लानिंग चल रहा है कि सबको यू नो एक जगह पे यूनाइट करना है. एंड और उनका सब फूड से लेके सब कुछ उनका फेवरेट होने वाला है, कलर कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग. सो दिस विल बी वन बिग सरप्राइज फॉर हर, जो मैं अपने साइड से करना चाहता हूँ.
2: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
3: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि. एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू. लेकिन आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है. तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.